0: एक मस्ती। दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
1: तो सुनिए जानकारियों से लबरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
0: अल्फा जेन,
1: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक।

श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।

ये आकाशवाणी दिल्ली का एफएम रेनबो चैनल है 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। आज मंगलवार है, शक संवत 1948 के आषाढ़ मास की 16वीं तिथि, तदनुसार 7 जुलाई 2026। सुबह के 5:53 और 13 सेकंड हुए हैं। हमारे कार्यक्रम अब आरंभ होते हैं।

और आइए अब आपको देते हैं जानकारी एफएम रेनबो से आज प्रसारित होने वाले कुछ कार्यक्रमों के बारे में। अब से कुछ ही देर में ठीक 6 बजे शालिनी सिंह आपके लिए लेकर आएंगी सुप्रभात। 7 बजे बबीता रावत और शालिनी सिंह आपके साथ रहेंगी गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR लेकर, जिसमें आप सुन सकते हैं विंबलडन अपडेट्स भी। 9 बजे बबीता रावत के साथ आप सुनेंगे दिल के तराने और गाने नए पुराने। पाश्चात्य संगीत से भी आप करते हैं प्रेम तो उत्कर्ष लेकर आएंगे 10 बजे और दोपहर 12 बजे पाश्चात्य संगीत के कार्यक्रम। 11 बजे बबीता त्रिपाठी रहेंगी बॉलीवुड की चटपटी खबरें लेकर आपके साथ, और साथ ही होंगे कुछ गीत भी ठीक 11 बजे। 1 बजे रेनबो हेल्पलाइन में आज चर्चा होगी कार्यस्थल पर और घर पर महिलाओं के वैधानिक हितों के बारे में। विशेषज्ञ रहेंगे श्री रमेश चंद, जो कि अधिवक्ता हैं उच्च न्यायालय दिल्ली में।

0: और रेडियो डॉक्टर आप सुन सकते हैं आज दोपहर 3 बजे, जिसमें फ्लैट फुट की प्रॉब्लम्स और सॉल्यूशंस पर चर्चा होगी डॉक्टर प्रदीप कुमार के साथ, जो कि एक प्रोस्थेटिस्ट हैं। बातचीत करेंगी शालिनी मित्तल। ये थी जानकारी दोस्तों हमारे आज के कुछ विशेष कार्यक्रमों के बारे में।
1: दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
2: तो सुनिए जानकारियों से लवरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
1: अल्फा जेन,
2: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक।

श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं।

0: कैच द रेन, बारिश के पानी की एक एक बूंद को हमें बचाना है। तो मेरा खास आग्रह है, वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
1: जल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं। रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के साथ बातचीत करेंगे। व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई गति मिलने की उम्मीद। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा, सहकारिता मंत्रालय ने पिछले 5 वर्षों में लगभग 30 करोड़ लोगों के जीवन में नई ऊर्जा का संचार किया। पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर में प्रदर्शनकारियों का पाकिस्तान को 48 घंटे का अल्टीमेटम। मांगे पूरी नहीं होने पर 9 जुलाई को निर्णायक कार्रवाई की दी चेतावनी। भारत ने अंडर 20 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में 4 स्वर्ण सहित कुल 20 पदक जीते और फुटबॉल में स्पेन और बेल्जियम फीफा विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगे। वार्ता के दौरान द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की जाएगी और दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई गति प्रदान की जाएगी। दोनों नेता आपसी हित के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के उद्देश्य से समझौता ज्ञापनों के आदान प्रदान भी करेंगे।

0: प्रधानमंत्री मोदी के कार्यक्रम की शुरुआत सुबह 10:30 बजे औपचारिक स्वागत समारोह से होगी। इसके बाद अतिथि पुस्तिका पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। श्री मोदी इंडोनेशिया के संसद परिसर में भी कार्यक्रम में शामिल होंगे, जहां वे दोनों देशों के बीच संसदीय सहयोग के महत्व का उल्लेख करेंगे। वे एक सामुदायिक कार्यक्रम में भी भाग लेंगे, जहां श्री मोदी प्रवासी भारतीय समुदाय के सदस्यों से बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वे राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ भारत इंडोनेशिया व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई गति प्रदान करने के लिए चर्चा करने के लिए उत्सुक हैं। इस साझेदारी की स्थापना उनकी 2018 की यात्रा के दौरान हुई थी। संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
1: इंडोनेशिया में भारत के राजदूत संदीप चक्रवर्ती ने कहा है कि प्रधानमंत्री की यात्रा से रक्षा, व्यापार, ऊर्जा, खाद्य सुरक्षा, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े कई समझौतों का मार्ग प्रशस्त होने की उम्मीद है। एक निजी समाचार चैनल से बातचीत में श्री चक्रवर्ती ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस यात्रा से द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूती मिलेगी।
2: India and Indonesia are very close and strategic partners.
3: भारत और इंडोनेशिया बेहद करीबी और रणनीतिक साझेदार हैं। निकोबार द्वीप समूह में स्थित भारत का सबसे दक्षिणी छोर इंडोनेशिया के आचे से मात्र 160 किलोमीटर दूर है। गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि के रूप में राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो की बेहद सफल यात्रा के बाद हमारे संबंध और भी मजबूत हो रहे हैं और प्रधानमंत्री की यात्रा इसे और भी मजबूती देगी।
1: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने बहरीन के शाह हमद बिन ईसा अल खलीफा से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय साझेदारी को और मजबूत करने पर चर्चा की। डॉ जयशंकर चार खाड़ी देशों की अपनी यात्रा के दूसरे चरण में कतर से बहरीन पहुंचे। विदेश मंत्री ने शाह हमद बिन ईसा अल खलीफा को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शुभकामनाएं दी। डॉ जयशंकर ने बहरीन में प्रवासी भारतीयों की सुरक्षा और कल्याण सुनिश्चित करने के लिए उन्हें धन्यवाद दिया। डॉ जयशंकर कुवैत और ओमान भी जाएंगे। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सहकारिता मंत्रालय ने पिछले 5 वर्षों में सहकारिता क्षेत्र से जुड़े लगभग 30 करोड़ लोगों के जीवन में नई ऊर्जा का संचार किया है। नई दिल्ली में सहकारिता मंत्रालय के 5वें स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करते हुए श्री शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2021 में स्थापित इस मंत्रालय ने सहकारिता तंत्र को आधुनिक, पारदर्शी, प्रौद्योगिकी आधारित और प्रतिस्पर्धी बनाया है। श्री शाह ने कहा कि सहकारिता विभाग ने प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है।
4: हमने कृषि ऋण, डेयरी, उर्वरक वितरण और ग्रामीण सेवाएं, इस सभी को प्राथमिक से लेकर राष्ट्रीय स्तर पर जोड़ने का काम किया है। सेकेंडरी और टर्शरी क्षेत्रों में भी उसको जोड़ने का काम किया है। भंडारण, उत्पादन, एक्सपोर्ट, जैविक उत्पादन, परंपरागत बीजों का उत्पादन, ज्यादा उत्पादन देने वाले बीजों का निर्माण, डिजिटल सेवाएं, बैंकिंग, मोबिलिटी, लॉजिस्टिक और हरित ऊर्जा, इस सबको एक माला में पिरोने का काम ये 5 साल में किया है।
1: मंत्रालय की उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए श्री शाह ने कहा कि 30 क्षेत्रों में फैली 85 लाख से अधिक सहकारी समितियों और 32 करोड़ सदस्यों को सम्मिलित करने वाला एक एकीकृत डिजिटल डेटाबेस बनाया गया है। सहकारिता मंत्री ने कहा कि सरकार ने प्राथमिक कृषि ऋण समितियों पैक्स की भूमिका का विस्तार किया है। इससे वे साझा सेवा केंद्रों के माध्यम से 300 से अधिक सेवाएं प्रदान कर सकेंगे।
4: आज पूरे देश के पैक्स एक ही बायलॉज के तहत काम कर रहे हैं। मॉडल बायलॉज को स्वीकार कर लिया, 300 गतिविधियों को 55,000 पैक्स के माध्यम से हम CSC की सेवाएं दे रहे हैं।

0: आउटलेट किया है और 300 पैक्स गैस के वितरण में लग गए हैं और लगभग 150 पैक्स जल आपूर्ति योजना का मेंटेनेंस का भी काम कर रहे हैं।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
2: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर पीओके में बढ़ती राजनीतिक उथल-पुथल के बीच जम्मू कश्मीर संयुक्त अवामी एक्शन कमेटी ने पाकिस्तान सरकार को 48 घंटे का अल्टीमेटम देते हुए चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगें पूरी नहीं हुई तो 9 जुलाई को निर्णायक कार्रवाई की जाएगी। कमेटी ने एक औपचारिक घोषणा में कहा कि उनका मौजूदा धरना प्रदर्शन तब तक अनिश्चित काल तक जारी रहेगा जब तक कि उनकी सभी मांगें पूरी नहीं की जाती। कमेटी ने पीओके के निवासियों और कश्मीरी प्रवासी समुदाय के सदस्यों से 9 जुलाई को होने वाले विरोध प्रदर्शन में भाग लेने का आह्वान किया है। भारतीय नौसेना शनिवार को विशाखापट्टनम में अपने 6th स्वदेशी प्रोजेक्ट 17A स्टील्थ फ्रिगेट महेंद्रगिरी F-38 का जलावतरण करेगी। एक रिपोर्ट।
2: रक्षा मंत्रालय ने बताया कि इस स्टील्थ फ्रिगेट को भारतीय नौसेना के युद्धपोत डिजाइन ब्यूरो द्वारा आंतरिक रूप से डिजाइन किया गया है। इस जहाज का नाम पूर्वी घाट की भव्य महेंद्रगिरी पर्वत श्रृंखला के नाम पर रखा गया है। मंत्रालय ने कहा कि यह जहाज लचीलेपन, शक्ति और अटूट संकल्प का प्रतीक है। महेंद्रगिरी जहाज अब एक विशिष्ट विरासत बनने और भारत के समुद्री इतिहास में एक और गौरवशाली अध्याय जोड़ने के लिए तैयार है। यह जहाज आधुनिक संयुक्त डीजल या गैस प्रणोदन प्रणाली से संचालित है। यह इसे समुद्री अभियानों के पूरे स्पेक्ट्रम में असाधारण मजबूती के साथ उच्च गति संचालन करने में सक्षम बनाता है। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
1: जनजातीय कार्य मंत्रालय आज से ओडिशा के भुवनेश्वर में जनजातीय अनुसंधान संस्थानों को सुदृढ़ बनाने पर 2 दिन की राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन करेगा। जनजातीय कार्य मंत्री जुएल ओराम कार्यशाला का उद्घाटन करेंगे। एक रिपोर्ट।
3: इस कार्यशाला में लगभग 200 प्रतिभागी भाग लेंगे। इस अवसर पर जनजातीय कार्य मंत्रालय और वाराणसी के संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। कार्यक्रम के दौरान ट्राइब एक्स नामक एक डिजिटल शिक्षण मंच का भी शुभारंभ किया जाएगा। यह मंच जनजातीय कला, संस्कृति, भाषाओं और पारंपरिक ज्ञान और कौशल विकास को समर्पित होगा। कार्यशाला का उद्देश्य देश भर में जनजातीय अनुसंधान संस्थानों के कामकाज की समीक्षा करना और उन्हें जीवंत ज्ञान संस्थानों, सांस्कृतिक संसाधन केंद्रों और जनजातीय विकास के लिए नीतिगत सहायता केंद्रों में परिवर्तित करने के लिए एक व्यापक कार्यसूची विकसित करना है। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं प्राची वाजपेयी।
1: जम्मू कश्मीर सरकार ने जानलेवा बीमारियों से जूझ रहे आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को राहत देने के लिए निर्वाचन क्षेत्र विकास निधि CDF योजना के दिशा निर्देशों में संशोधन किया है। नई व्यवस्था के अंतर्गत प्रत्येक विधायक अपने CDF से 20 लाख रुपए तक की राशि उपलब्ध करा सकेगा। ये सहायता गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों और अन्य अधिसूचित आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के मरीजों को दी जाएंगी। और अब खेल खबरें। थाईलैंड के पटाया में आयोजित अंडर-20 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवानों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 4 स्वर्ण, 7 रजत और 9 कांस्य पदकों सहित कुल 20 पदक जीते हैं। महिला वर्ग में भारत 184 अंक के साथ उपविजेता रहा, जबकि पुरुष फ्रीस्टाइल वर्ग में भारतीय टीम 152 अंक के साथ तीसरे स्थान पर रही। क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच 5 T20 मैचों की श्रृंखला का तीसरा मुकाबला आज रात नॉटिंघम में खेला जाएगा। मैच भारतीय समयानुसार रात 10 बजे से शुरू होगा। भारतीय टीम श्रृंखला में पहली जीत दर्ज करने के इरादे से उतरेगी। और बात फीफा फुटबॉल विश्व कप की। फुटबॉल में बेल्जियम ने सिएटल में चल रहे फीफा विश्व कप के राउंड ऑफ 16 मुकाबले में अमेरिका को 4-1 से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह पक्की कर ली है। बेल्जियम अब शुक्रवार को लॉस एंजल्स स्टेडियम में क्वार्टर फाइनल में स्पेन का सामना करेगा। इससे पहले स्पेन ने कल रात डलास स्टेडियम में राउंड ऑफ 16 मुकाबले में पुर्तगाल को 1-0 से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई थी। अटलांटा में आज रात राउंड ऑफ 16 के एक अन्य मैच में मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना का सामना मिस्र से होगा। मैच भारतीय समयानुसार रात 9:30 बजे से खेला जाएगा। मौसम विभाग ने गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ, मध्य महाराष्ट्र और तटीय कर्नाटक में आज मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले दो दिनों में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, बिहार, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, विदर्भ, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और कर्नाटक के भीतरी हिस्सों में भी मूसलाधार वर्षा का अनुमान है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, केरलम, माहे, ओडिशा, राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वोत्तर क्षेत्र के कुछ हिस्सों में भी अगले 3 से 4 दिनों तक ऐसी ही स्थिति बने रहने की संभावना है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं सरफिरोजी।
4: धन्यवाद विशाल। अयोध्या में राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में ट्रस्ट के महासचिव और सदस्य के इस्तीफे आज के सभी अखबारों की पहली बड़ी खबर है। राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है, चंपत राय और अनिल मिश्र को कामकाज से विश्राम, इस्तीफे मंजूर। दैनिक भास्कर के शब्द हैं, राम ट्रस्ट कृष्ण भरोसे, पूर्व IFS अधिकारी कृष्ण मोहन बनाए गए अंतरिम महासचिव। दैनिक जागरण ने SIT की प्रारंभिक रिपोर्ट के हवाले से लिखा है, ट्रस्ट के सदस्य अनिल मिश्र दोषी, चंपत राय का नाम गायब। घुसपैठियों को चुन चुन कर निकालेंगे, भ्रष्टाचारियों से वसूलेंगे पाई पाई, गृहमंत्री अमित शाह का ये बयान अमर उजाला में है। कोलकाता में एक कार्यक्रम में गृहमंत्री ने कहा, घुसपैठियों की पहचान कर वापस भेजने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। पहलगाम आतंकी हमले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA ने हाफिज सईद को बनाया आरोपी। देशबंधु के अनुसार पूरक आरोप पत्र में पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन लश्करे तैयबा के सरगना पर भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ने और आतंकी साजिश रचने का आरोप। नीट PG परीक्षा के पैटर्न में फेरबदल की खबर हिंदुस्तान में है। 30 अगस्त को कंप्यूटर बेस्ड मोड में आयोजित होगी परीक्षा, अब 200 की जगह 180 सवाल पूछे जाएंगे। बार बार यातायात नियमों के उल्लंघन पर निलंबित होगा ड्राइविंग लाइसेंस। दैनिक जागरण के अनुसार बढ़ते सड़क हादसों को देखते हुए सड़क परिवहन मंत्रालय की मोटर वाहन कानून में बदलाव की तैयारी।
1: धन्यवाद सरफिरोजी। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के साथ बातचीत करेंगे। व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई गति मिलने की उम्मीद। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा, सहकारिता मंत्रालय ने पिछले 5 वर्षों में लगभग 30 करोड़ लोगों के जीवन में नई ऊर्जा का संचार किया। पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर में प्रदर्शनकारियों का पाकिस्तान को 48 घंटे का अल्टीमेटम। और फुटबॉल में स्पेन और बेल्जियम फीफा विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
5: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am VC Pramod, the headlines. Prime Minister Narendra Modi to hold talks with Indonesian President Prabowo Subianto in Jakarta today to provide fresh momentum to comprehensive strategic partnership between the two countries. Home and Cooperation Minister Amit Shah says Cooperation Ministry infused new energy into lives of nearly 30 crore people over the past 5 years. Pakistan-occupied Kashmir protesters issue 48-hour ultimatum to Islamabad, warn of grand and final action on July 9th if demands are not met. India secure 20 medals including 4 gold at Under-20 Asian Wrestling Championships in Pattaya. And Spain book place in FIFA World Cup quarterfinals with a dramatic 1-0 victory over Portugal. Belgium beat US 4-1 to enter the quarterfinals. Prime Minister Narendra Modi will hold talks with Indonesian President Prabowo Subianto in Jakarta today. Mr. Modi arrived in Jakarta yesterday on a 3-day state visit at the invitation of Indonesian President. In a special gesture, President Prabowo personally received the Prime Minister at the airport. Indonesian Air Force fighter jets escorted the Prime Minister's aircraft after it entered Indonesian airspace. More from our correspondent.
6: Describing the welcome as deeply touching, Prime Minister Modi said he looked forward to holding discussion with President Prabowo to impart fresh momentum to the India-Indonesia Comprehensive Strategic Partnership, which was established during his 2018 visit. Prime Minister Modi praised the rich cultural performances presented during his arrival in Jakarta, saying they reflected the deep civilizational, cultural and spiritual ties shared by India and Indonesia. The Prime Minister also appreciated a Bharatanatyam performance by Samanavaya group comprising Indonesian students. The Prime Minister witnessed a series of performances. These include Indonesia's iconic Wayang Kulit shadow puppetry depicting the Ramayana, a Bharatanatyam recital by Indonesian students, and a devotional Buddhist dance paying homage to the triple gem, Sri Ratna. Expressing gratitude to the Indian community, the Prime Minister said he was touched by the warm reception accorded to him in Jakarta. Prime Minister Modi received an enthusiastic welcome from the Indian diaspora upon his arrival at the hotel in Jakarta. India's ambassador to Indonesia, Sundeep Chakraborty, said major announcements expected across defense, maritime, security, digital connectivity, critical minerals and trade sectors.
7: We will be doing a lot of understandings and agreements on several areas of cooperation. There will be cooperation announcements or agreements in five sectors. One would of course be defense and maritime security, then trade and investment, food security and fertilizer security, energy security, critical minerals and of course educational and health sectors.
6: Indonesia is the first stop of Prime Minister Modi's three-nation tour, which will also include visit to Australia and New Zealand later this week. Sandeep Dasgupta, Akashvani News, Jakarta.
5: Union Home and Cooperation Minister Amit Shah has said that Cooperation Ministry has infused new energy into the lives of nearly 30 crore people associated with the cooperative sector over the past 5 years. Addressing the 5th Foundation Day celebrations of the Cooperation Ministry in New Delhi, Mr. Shah said the ministry established by Prime Minister Modi in 2021 has transformed the cooperative ecosystem into one that is modern, transparent, technology-driven and competitive.
8: सहकारिता से जुड़े हुए देश के 30 करोड़ लोग
9: For 30 crore people associated with the cooperative sector and more than 8.5 lakh cooperatives across the country, this is a day they had been waiting for over the past 75 years. Prime Minister Narendra Modi decided to establish an independent Ministry of Cooperation in the Government of India. This decision by the Prime Minister has served to elevate the country's cooperative movement to a new stage.
8: सहकारिता आंदोलन को नए स्टेज पर ले जाने का काम
5: He said the ministry has identified the key challenges facing the cooperative sector, prepared a comprehensive roadmap for its development and resolution, and introduced reforms that have modernized the entire ecosystem. He added that when the nation celebrates the centenary of its independence in 2047, the cooperative movement will serve as the strong foundation of a prosperous India. Recalling the creation of the ministry on July 6, 2021, Amit Shah said the decision ended a 75-year wait for millions of people associated with the cooperative sector. The Sri Ram Janmabhoomi Tirtha Kshetra Trust has accepted the resignations of General Secretary Champat Rai and Trust Member Dr. Anil Mishra. Both had stepped down after their names surfaced in the alleged Ram Temple donation embezzlement case. Krishna Mohan has been appointed Interim General Secretary until a new appointment is made. His complaint formed the basis of the FIR registered in the alleged donation irregularities case in which 8 people have been arrested. The trust has also decided to appoint a chief executive officer and has formed a 3-member committee to recommend candidates. Addressing the media, trust treasurer Govind Dev Giri said the possibility of a conspiracy behind the episode could not be ruled out. He also asserted that all donated ornaments and valuables are safe, properly accounted for, and that details of donated items are available with the trust. This is Akashwani giving you the news. For quick news updates round the clock, follow us on our X handle @AIRNewsAlerts. And for details of these stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and download News on AIR app. Amid the political storm intensifying in Pakistan-occupied Kashmir POK, the Jammu-Kashmir Joint Awami Action Committee, JAAC, has issued a 48-hour deadline to the government in Islamabad, threatening a grand and final response on the 9th of July if the conditions remain unfulfilled. In a formal declaration, the committee announced that its current sit-in protest will persist indefinitely until all of its demands are satisfied. More from our correspondent.
10: The committee has called upon residents throughout POK and the members of the Kashmiri diaspora to participate in the protest scheduled for July 9. Police brutality by Pakistani forces has intensified on Sunday against the people protesting against

0: Well, my dear friends, we have the first caller with us. Hello.
1: Jai Mata Di.
0: Jai Mata Di.
1: मेरा नाम है पूरन वर्मा और मैं आपसे बात कर रहा हूँ डिस्ट्रिक्ट जयपुर राजस्थान गांव का नाम अंतमल बगुला।
0: पूरन वर्मा जी प्रोग्राम में स्वागत है और बताइए आज का दिन कैसे रहा?
1: बस सर बढ़िया रहा और दिन और भी अच्छा हो गया जब पहला कॉल मिल गया।
0: क्या तो बात है क्या बात है। और पता ही आज कौन सा वाला गीत सुनना चाहूंगा?
1: जी सर फिल्म का नाम रहेगा गुलाम।
0: गुलाम
1: यस।
0: मैं ढूंढ रहा हूँ आपका गुलाम, शायद मेरा म्यूजिक बैंक में नहीं है और कोई दूसरा होगा।
1: तो फिर फिल्म का नाम रहेगा अंश।
0: फिल्म का नाम पता है फिर से?
1: अंश अंश
0: अंश अंश
1: भी यस, यस।
0: पता नहीं मतलब अंश भी नहीं है मेरा पास, सॉरी
1: नहीं है
0: नहीं है।
1: तो फिर फिल्म का नाम रहेगा दिल है तुम्हारा।
0: दिल है तुम्हारा यस है।
1: इसमें कौन कौन से गाने आप बताओ जरा।
0: अच्छा मैं बताता हूँ, पिताबी का खामोशी का एक है, चाया है जो दिल पे एक है, चाही जुबान से एक है, दिल है तुम्हारा है, दिल लगा लिया मैंने।
1: ये दिल लगाने की।
0: अच्छा ठीक है। और बताइए किस किस को ये टिकट करना चाहूंगा?
1: जी मैडम मैं मौसम जान सकता हूँ आपको उधर कैसा हो रहा है मौसम?
0: मौसम एकदम बढ़िया है इधर आज, मतलब सूरज नहीं दिखता है, पूरा क्लाउडी क्लाउडी लगता है और थोड़ा बारिश भी हो रहा था।
1: लेकिन इधर भी ऐसा हुआ सर मौसम, बारिश हुई थी, सुबह भी हुई थी, रात को भी हुई थी, अभी ठीक है। और सबसे पहले ये गाना आपके लिए रहेगा।
0: थैंक यू।
1: और मेरा दोस्त है राकेश है, भगवान सिंह परवान जी है, अभिनाथ जी है, गोल्डी भाई है, अमल है, बिमल है और जितने भी कॉलर लाइव आपसे आखिरी तक कॉलर जिनका भी कॉल लगेगा उन श्रोताओं तक सुनाना चाहता हूँ ये गाना।
0: ओके पुरान सिंह वर्मा जी थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग और सुनिए आपका रिक्वेस्ट सॉन्ग।
1: थैंक यू सर धन्यवाद।
0: या धन्यवाद भाई
1: उसी वनवाड़ के।
0: तो माय डियर फ्रेंड्स पुरान सिंह वर्मा मेखन लगा रेगुलर लिसनर था कि ऐसे राजस्थान ब्रा और ताहि रिक्वेस्ट कर लगा गीत अमिखन इतिया हुनी हबो दिल है तुम्हारा फिल्म ब्रा उदित नारायण अलका याग्निक वास्ते म्यूजिक दिस है नदीम श्रवण लिरिक्स समीर हुनी कैन एंजॉय कर भी।

0: आकाशवाणी
1: और ये है आकाशवाणी रेनबो और शो है रेनबो हेल्पलाइन और रेनबो हेल्पलाइन में आपके साथ हूं मैं बबिता त्रिपाठी और आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक खासकर औरतों के लिए तो उनके अधिकारों को लेकर बात होगी कार्यस्थल पर या फिर उनके घर पर उनके बहुत सारे अधिकार हैं जिनके बारे में शायद उनको पता ही नहीं है तो आज रेनबो हेल्पलाइन में बात होगी वुमेन्स लीगल राइट्स एट द वर्क प्लेस एंड होम और हमारे साथ एक्सपर्ट हैं रमेश चंद जी जो कि हैं एडवोकेट दिल्ली हाई कोर्ट दिल्ली उच्च न्यायालय में अधिवक्ता हैं तो आज आप सब के ढेर सारे सवालों का जवाब देने के लिए वो बिल्कुल रेडी हैं और फिलहाल उनका स्वागत करते हैं तो रमेश जी आपका बहुत बहुत स्वागत आकाशवाणी रेनबो पर
2: थैंक यू वेरी मच
1: तो चलिए इनके साथ ढेर सारी बातें करने के लिए हम सब तैयार हैं आप सब अपने सवालों के साथ तैयार हो जाइए और सवाल भेजने के लिए आपको क्या करना है आपको कॉल करना है या व्हाट्सएप मैसेज करना है कॉल करने के लिए नंबर है 2342-1080 या 2342-1084 आप चाहें तो व्हाट्सएप मैसेज के जरिए भी अपना सवाल भेज सकते हैं 9868107070 इस पर आपको व्हाट्सएप मैसेज करके अपना सवाल लिख भेजना है तो आज बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक कार्यस्थल और घर पर महिलाओं के कानूनी अधिकार क्या क्या हैं इनको जानने समझने और इनसे संबंधित ढेर सारे सवालों के लिए आप सब हो जाइए तैयार और ये गाना हमारे एक्सपर्ट रमेश जी की पसंद का ही और आज तो शो में सारे के सारे गाने उन्हीं के पसंद के बजने वाले हैं एंजॉय द शो

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।

ये है आकाशवाणी रेनबो शो, चल रहा है रेनबो हेल्पलाइन। आपके साथ हूँ मैं बबिता त्रिपाठी और आज बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात हो रही है, कार्यस्थल हो, घर हो,

0: महिलाओं की सुरक्षा बहुत जरूरी हो जाती है। उनके कानूनी अधिकार बहुत सारे हैं, लेकिन क्या होता है कि महिलाएं अवेयर नहीं होती हैं, और कुछ अपडेट हुआ है तो भी अवेयर नहीं होती हैं। और इसको ध्यान में रखकर हम ऐसे टॉपिक्स लेकर आते रहते हैं ताकि सब में जागरूकता हो, और ख़ास तौर पर महिलाओं की जागरूकता बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर वो जागरूक होंगी अपने लीगल राइट्स के प्रति तो अपने आप वो सुरक्षित महसूस करेंगी, और ना सिर्फ सुरक्षित महसूस करेंगी बल्कि अपने कानूनी अधिकारों का पूरी तरीके से लाभ भी उठा पाएंगी। तो ये जो टॉपिक है बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत लंबा है, लेकिन कोशिश करेंगे कि इस घंटे हम बहुत सारी समस्याओं का समाधान कर पाएँ, क्योंकि ये जो महिलाएँ हैं ना, हमारे देश की धरोहर है, हमारे देश को आगे बढ़ाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। तो हमारे एक्सपर्ट रमेश चंद जो एडवोकेट हैं दिल्ली हाई कोर्ट में, वो आ चुके हैं, उनकी उन्होंने आपसे वादा किया है, मुझसे एक्चुअली मेरे थ्रू, कि आपके सभी सवालों का बहुत अच्छे से जवाब देंगे। फिलहाल मैं रेडी हूँ, आप सब अपने सवालों के साथ तैयार हो जाइए, और अगर जल्दी से जल्दी कॉल मिलाएंगे तो जल्दी से जल्दी आपकी समस्याओं का समाधान हो पाएगा। व्हाट्सएप मैसेज करने के लिए आपके लिए नंबर है 9868107070, और कॉल करने के लिए 2342108 एंड 2342108। आप चाहें तो व्हाट्सएप मैसेज करें या फिर कॉल करके अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। फिलहाल सवाल हमारे रमेश जी से, और सवाल ये है कि घर हो या वर्क प्लेस हो, बहुत जरूरी हो जाता है सुरक्षा, आपका क्या कहना है?
1: बिल्कुल सही आपने प्रश्न किया, और इस प्रश्न से तो महसूस होता है कि जो महिलाएं हैं वो ना तो वर्क प्लेस पे सुरक्षित हैं और ना ही घर पे। अगर घर पे अगर उसको देखते ही जो खुशहाली आती है परिवार को, वो हमेशा बरकरार रहनी चाहिए, पर लेकिन ऐसा देखने में बहुत कम मिला है। वर्क प्लेस पे भी हमने देखा है कि कुछ महिलाएं हैं, उनके साथ में एक्सप्लाइटेशन काम के बहाने से किया जाता है, और मेरा अपना खुद का एक्सपीरियंस है कि जो बॉसेस होते हैं वो उनको इतना ओवरलोड कर देते हैं, या फिर अनवांटेड टॉपिक या अनवांटेड वर्क उनको दे देते हैं, जिससे वो टारगेट जो उनका अचीव नहीं हो पाता। तो मैंने देखा कि इतना एक्सप्लाइटेशन से कहीं कहीं पे उन्होंने सुसाइड भी कमिट किए हैं, जिनकी इंक्वायरियाँ हुई। इंक्वायरियों में क्या होता है कि डिपार्टमेंटल इंक्वायरियाँ जो होती हैं, हर आदमी अपने आदमी को प्रोटेक्ट करने में लगी रहती हैं। तो ये जो रिलेशनशिप है, रिलेशनशिप बिटवीन बोथ द पार्टीज, अगर मान लीजिए बिल्कुल गंदी हो जाती है, गंदी का मतलब कि स्टेबल नहीं रह पाती, और जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ कि एक लड़की थी हमारे यहाँ काम करती थी, शी वॉज फ्रॉम दी डाउन ट्रोडन कम्युनिटी एंड वेयर एज द मैन वॉज वर्किंग फ्रॉम दी ब्राह्मीन कम्युनिटी, I should not say, but boy was very nice and she was working under him. उनके आदिन में वो काम कर रही थी, कोई बात होगी, कोई मन मुटाव होगा काम से रिलेटेड, तो कंप्लेंट की उनके अगेंस्ट में, और उसके बाद रिलेशनशिप बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ तक पहुंची, तो वहां उनका डाइवोर्स हुआ एंड लेटर ऑन शी कमिटेड सुसाइड। तो ये जो चीजें आती हैं, इसको कोशिश ये की जानी चाहिए कि उसको सॉर्ट आउट फ्रॉम दी वेरी बिगिनिंग में ही कर लेना चाहिए। उसको जितना लिंगर ऑन करोगे उतनी प्रॉब्लम बढ़ जाती है। तो मैं समझता हूँ कि ऑलमोस्ट सेम सिचुएशन घर के अंदर भी होती है, परिवार के अंदर भी होती है। किसी इशू को इतना लंबा नहीं बना देना चाहिए कि दोनों के जो ईगो है वो हर्ट हो। बेहतरीन यह कि ऐसी सिचुएशन पे दोनों को कंप्रोमाइज करके चलना चाहिए। अगर मान लीजिए उस फैमिली में अगर छोटे बच्चे हैं और वो जब ऐसी सिचुएशन देखते हैं तो उनके ऊपर बहुत गलत इम्पैक्ट पड़ता है, उनका ग्रोथ प्रॉपरली नहीं हो पाता, और फिर वो उस वातावरण से अलग वो निकल जाते हैं। तो बेहतरीन यह है कि घर पे हो, चाहे बाहर हो, हमेशा अपने रिलेशनशिप मेलोडियस होने चाहिए, बिल्कुल अच्छे होने चाहिए और किसी को डैमेजिंग करने वाले नहीं होने चाहिए।
0: सर, किस तरह की असुरक्षा है जिसका महिलाओं को सामना करना पड़ता है आमतौर पर आपके पास जो केसेस आते हैं?
1: एक्चुअली मैंने देखा है कि डोमेस्टिक के अंदर फिनेंशियल से रिलेटेड होती हैं। अगर महिला को अगर पूरा खाना, अगर मान लीजिए वो हाउस वाइफ है, अगर पूरा खर्चा अगर उसको नहीं मिल रहा तो सर्टेनली वो प्रॉब्लम तो होगी, क्योंकि रिक्वायरमेंट है, बच्चों की रिक्वायरमेंट है, उसकी रिक्वायरमेंट है, हाउ शी कैन फुलफिल। तो ऐसे मामले के अंदर महिलाओं को पूरा फिनेंशियल हेल्प होना चाहिए। अगर मान लीजिए उनका हस्बैंड ही अगर रिटायर्ड आदमी हो और उनसे एक्सपेक्ट करें कि भैया पूरा खर्चा चलाओ, अब आपको रिटायरमेंट पे कितना पैसा मिलता है, आपके खर्चे हैं वो कितने हैं, वो सारा कुछ कैलकुलेट करके चलना पड़ता है। तो उसमें क्या है, महिलाओं के साथ में कभी जैसे मार्केट के अंदर से जैसे सब्जी वगैरह लेनी हो तो उसके जो रेट्स वगैरह हैं फ्लैक्चुएट कर जाते हैं, तो बजट से बाहर जाने पे क्या होता है कि परिवार के अंदर एक प्रकार की कलह शुरू हो जाती है। तो कोशिश ये हो हस्बैंड की भी और उनकी वाइफ की भी कि ऐसी सिचुएशन अराइज ना हो और स्मूथली अपना घर को चलाते रहें तो अच्छा है।
0: यानी बजट को लेकर बहुत सारी प्रॉब्लम आती है। और अगर ऑफिस की बात करें
1: तो ऑफिस के अंदर भी काम से रिलेटेड होता है कि जैसे मान लीजिए मेरा खुद का अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है कि मेरा सबॉर्डिनेट थे, लेट आते थे, एक दिन पूछ लिया, कंप्लेंट हमारी बना के दे दी, अल्टीमेटली उस मैटर को फिर सॉर्ट आउट हुआ। तो ये सिचुएशन पैदा होती है और ये हालात जो होते हैं टाइम के हिसाब से वो पैदा करवाते हैं। तो बेहतरीन ये है कि हमें अपने आप को कूल भी रखना है, काम से रिलेटेड भी और फैमिली से रिलेटेड भी, और जहां कहीं पे भी निकलो बिल्कुल एकदम से नॉर्मल वे में निकलो, किसी को ज्यादा ओवर स्मार्ट बनने की नौबत नहीं आनी चाहिए। घर के अंदर जो भी बनेगा या ऑफिस में बनेगा प्रॉब्लम तो उसको फेस करनी पड़ेगी।
0: तो चलिए, जो सवाल है वो भी आने शुरू हो गए हैं, आप सबके सवाल अब मैं लेने शुरू करूंगी, मुझे लगता है मेरे सवालों की जरूरत नहीं है। और क्या क्या अधिकार हैं उनके घर पर, क्या क्या अधिकार हैं वर्क प्लेस पर, इसकी बात भी करेंगे और आप सबके सवालों का सिलसिला भी शुरू करेंगे। मुझे लगता है आपकी पसंद के बहुत सारे मेरे पास गाने जो आ चुके हैं उनको भी बजाना ज़रूरी है, और बहुत प्यारे प्यारे गाने आपने चूज़ किए हैं और मुझे लग रहा है कि इनको बजाना चाहिए। तो इस गाने से पहले मैं आप सबको कहूँगी कि अगर आपने अभी तक अपना सवाल हम तक नहीं पहुँचाया है, कोई भी क्वेरी है मन में, कोई भी आसपास आप कुछ ऐसा देख रहे हैं जहाँ महिलाएँ असुरक्षित महसूस कर रही हैं, तो उनके प्रति क्या कानूनी अधिकार हैं और किस कानूनी अधिकार का वो लाभ उठा सकती हैं, ऐसा कोई भी सवाल आपके मन में है तो आप प्लीज पूछ डालिए 2342-1080 या 2342-1084 के बजाय 82 ये नंबर काम कर रहा है, इस पर कॉल करिएगा 2342-1080 या 2342-1082। और व्हाट्सएप मैसेज करने के लिए नंबर सेम है 9868-107070 पर आप WhatsApp मैसेज करिए, अपना सवाल लिख भेजिए।

0: आकाशवाणी रेनबो पर आप सुन रहे हैं रेनबो हेल्पलाइन। मैं हूं बबीता त्रिपाठी और आप सबके जो सवाल हैं वो ढेर सारे हम तक पहुंच गए हैं और आपने अभी तक सवाल नहीं किया है और दिमाग में कुछ चल रहा है कि क्या क्या अधिकार होने चाहिए, कार्यस्थल पर हो या घर पर। महिलाओं के जो कानूनी अधिकार हैं वो जानना ज़रूरी है। और अगर कहीं आप किसी तरह की सफरिंग देख रहे हैं, महिलाओं की सफरिंग देख रहे हैं और आपको लगता है कि क्या किया जा सकता है, तो भी आप के लिए ज़रूरी है कि आप जानें कि उनके लिए क्या कानूनी अधिकार बनाए गए हैं। हमारे साथ एक्सपर्ट रमेश चंद, एडवोकेट दिल्ली हाई कोर्ट हैं और वो आप सबके सवालों का जवाब देने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। कॉल नहीं किया है तो कॉल करिए 2342-1080 या 2342-1082 पर। आप चाहें तो व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं 9868107070 पर। आप सबके मैसेजेस की तरफ बढ़ें क्योंकि बहुत सारे आ रहे हैं। उससे पहले एक नज़र डाल लेते हैं कि घर पर या वर्क प्लेस पर, दोनों जगहों पर महिलाओं के जो ढेर सारे कानूनी अधिकार हैं, मोटा मोटी तौर पर सर बताइए, बहुत सारे अधिकार हैं, अगर पॉसिबल हो कितने सारे अधिकार आप बता पाएंगे?
1: अधिकार तो बहुत हैं
0: जी,
1: पर लेकिन उनका उपयोग कैसे किया जा सकता है और उसका तरीका जो है पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ये दिमाग में रखना बहुत जरूरी है।
0: जी बिल्कुल।
1: और कोशिश ये हो कि जितना अगर हम पॉजिटिव चलेंगे उतना ही रिजल्ट हमें भी पॉजिटिव ही मिलेगा। तो वर्क प्लेस पे क्या होता है, कभी कभी अपना स्कोर फिट करने के लिए झूठी कंप्लेंट कर दी जाती है
0: और ये सवाल आने शुरू हो गए सर।
1: झूठी कंप्लेंट करनी शुरू कर देते हैं तो रिजल्ट क्या होता है उसका, कि ना तो वो जो एम्प्लॉय है वो काम कर पाएगा, ना वो जो जिसने कंप्लेंट की है वो कर पाएगा। तो दोनों तरफ से, यानी कि काम जो है ओवरऑल सफरिंग जो है वो एम्प्लॉयर को होती है। तो बेहतरीन यह है जो भी एम्प्लॉयर है वो ऐसी सिचुएशन को अराइज ना होने दे और कोशिश करे कि उसको बिठा के सॉर्ट आउट कर दे।
0: तो नहीं सर, अधिकार जो है उन पर हम चर्चा कर रहे थे कि घर पर हो या बाहर ऑफिस में हो, किस तरह के अधिकार उनके लिए हैं, जो मेन अधिकार हैं उन पर हम बात करना चाहेंगे ताकि लोगों को क्लियर हो सके कि किस तरह के अधिकार हैं जो उनके लिए जानना जरूरी है।
1: देखिए, इसमें अधिकार जो है जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, संवैधानिक अधिकार। संवैधानिक अधिकार में आर्टिकल 14 है, उसमें क्या है, इक्वल वर्क इक्वल पे और देयर शुड नॉट बी एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ कास्ट क्रीड सेक्स एटसेट्रा। तो मेन जो है कि आर्टिकल 14 का वायलेशन बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए और उसके अलावा आर्टिकल 15 सिमिलर इसी से मिलता जुलता है। इसी तरीके से आर्टिकल 21, तो जीवन में क्या है, स्वतंत्रता जो है इंडिविजुअल की वो बहुत जरूरी है। फिर इसी प्रकार से प्राइवेसी, हर आदमी को अपनी प्राइवेसी मेंटेन करने का राइट है। डिग्निटी, उसको अपनी डिग्निटी मेंटेन रखने का भी अधिकार है। फिर उसके तक राइट और भी बहुत सारे आते हैं पर बेहतरीन यह है कि जितना हो सके, मैं तो यही कहूंगा कि कंप्रोमाइज इज द बेस्ट वे। तो राइट्स में क्या है, कोई किसी के साथ में बदतमीजी नहीं करेगा। प्राइवेसी जो है उसको कोई टच नहीं करेगा। तो ओवरऑल आर्टिकल 39 के अंदर समान काम के लिए समान वेतन, इक्वल वर्क इक्वल पे, कि जो काम अगर पुरुष करेगा वैसे ही काम अगर लेडी करती है तो उसको भी उतना ही वेतन मिलेगा। तो ये इनका राइट है, उसमें किसी प्रकार की डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। इसी तरीके से कुछ और भी बहुत सारे अधिकार हैं।
0: सर एक सवाल भी आ गया है, एम्प्लॉयज की अगर हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर आया है कि निधि का प्रयागराज से एक सवाल आया है कि माय क्वेश्चन इज दैट कैन अप्रूव्ड लीव्स मे बी कैंसल्ड फ्रॉम एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर्स एंड, वेदर इट इज कैजुअल लीव और अर्नड लीव।
1: नहीं, वो कैंसिल कर सकते हैं, डिस्क्रिशन है उनका पूरी, क्योंकि वो अपने वर्क को देखते हुए वो कोई भी एक्शन ले सकते हैं, कोई भी डिसीजन ले सकते हैं।
0: अच्छा।
1: तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर मान लीजिए ऑलरेडी पहले से ही आपने अपनी लीव, जैसे कैजुअल लीव होती है, अप्रूव करवा ली है, और एम्प्लॉयर को अगर मान लीजिए अर्जेंसी आ गई तो वो कैंसिल कर सकते हैं।
0: अच्छा।
1: पर कोशिश ये होती है कि नॉर्मली एम्प्लॉयर जो होता है बड़ा सॉफ्ट हार्टेड होता है, वो कभी कोई नेगेटिव एक्शन नहीं लेना चाहता और ना ही लेते हैं।
0: नहीं सर, कई बार हो जाता है कि आप वर्क प्लेस पर ऐसे लोग भी मिलते हैं जो ऐसी चीजें देखने को मिलती हैं, मतलब एक एक कंडीशनिंग है कि ऐसा कुछ हो गया कभी।
1: हाँ।
0: तो ऐसी कंडीशन में जो है
1: तो फिर वो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा ना। आपने एप्लीकेशन जो है लीव सैंक्शन कर दी है ना, और लीव सैंक्शन करने के बाद आप उसको विड्रा कर रहे हैं है ना, तो वो नहीं कर सकते। उसमें तो जो एम्प्लॉय है वो कोर्ट जा सकता है, उसके लिए चैलेंज कर सकता है।
0: पैंथर तोमर किशनगंज दिल्ली से लिख रहे हैं और इन्होंने लिखा कि आज घरेलू हिंसा एक बड़ी समस्या है। ऐसे में महिलाएं पारिवारिक रिश्तों को बनाए रखने के लिए घर से बाहर निकलकर कंप्लेंट दर्ज कराने में कतराती हैं। ऐसे महिलाओं को क्या कदम उठाना चाहिए?
1: देखिए, बोल्ड तो होना पड़ेगा आपको। क्योंकि घर का मामला हो या बाहर का मामला हो, आपको कंप्लेंट लिखवाने के लिए या तो पुलिस स्टेशन जाना होगा या फिर कोर्ट के अंदर एप्लीकेशन लगाएं। और यही नहीं बल्कि आपकी एक हेल्पलाइन भी दी हुई है 1091, आप उसकी मदद ले सकते हैं। तो वो अपने आप रिकॉर्ड हो जाएगी और उसके बाद जो अथॉरिटी कंसर्न होगी वो अपने एक्शन ले लेगी। तो कोई दिक्कत वाले इश्यूज नहीं है, दीज आर वेरी स्मॉल इश्यूज और एक्शन प्रॉपर लिया जाता है अथॉरिटी की तरफ से भी।
0: तो चलिए ठीक है, अब आप सबके सवाल लगातार आते रहने चाहिए, इसी तरह से आप सबके सवाल लिए जाएंगे। आपके मन में कोई भी क्वेरी है आज के टॉपिक को लेकर तो फटाफट आप अपना सवाल भेज दीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि मिस हो जाए। विमेंस लीगल राइट्स एट द वर्क प्लेस एंड होम, आज इस टॉपिक पर बात हो रही है। हमारे साथ है दिल्ली हाई कोर्ट के एडवोकेट रमेश चंद। आप सब अपने सवाल कैसे पूछेंगे, फोन करके या व्हाट्सएप मैसेज करके? फोन करने के लिए 2342 1080 या 2342 1082 इन नंबर्स पर कॉल करना है, या व्हाट्सएप मैसेज करिए, अपना सवाल पूछ डालिए 9868107070 पर, 9868107070 पर। सुन रहे हैं आकाशवाणी रेनबो पर, रेनबो हेल्पलाइन, आपके साथ हूं मैं बबीता त्रिपाठी।
2: मैं बहुत अमीर आदमी नहीं हूं, तो मेरे पास कोई बिलियन पैसे हैं या करोड़ों या अरबों मेरे जेब में पड़े हुए हैं, वो कहाँ ले जाना है? वी शुड स्पेंड इट हियर फॉर गुड थिंग्स, आई हैव अर्नड इट, माय एक्सपीरियंस इज माय वेल्थ।

0: रेनबो हेल्पलाइन चल रहा है आपके साथ, मैं हूं बबीता त्रिपाठी और शो चल रहा है रेनबो हेल्पलाइन। तो आपको पता है कि हमारे साथ एक्सपर्ट जुड़ते हैं शो में और आप सबके सवालों का जवाब देते हैं किसी खास टॉपिक पर। और आज हम बात कर रहे हैं कार्यस्थल पर या घर पर महिलाओं के कानूनी अधिकार क्या हैं। तो आज हमारे साथ जुड़े हैं रमेश चंद जी, जो कि एडवोकेट हैं दिल्ली हाई कोर्ट में, और आप सबके सवाल भी लगातार आ रहे हैं। अगर अभी तक आपने सवाल नहीं पूछा है तो नंबर सुन लीजिए जिस पर आपको कॉल करना है, या व्हाट्सएप मैसेज के लिए भी एक नंबर है जिस पर आपको व्हाट्सएप मैसेज करना है, 2342-1080 या 2342-1082। इन दो नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं और व्हाट्सएप मैसेज करने के लिए नंबर है 9868107070। और आप सबके जो सवाल हैं वो भी काफ़ी आ गए हैं, तो चलिए एक एक करके उन सवालों को लेते हैं। फिलहाल तो लाइन पर कोई बने हुए हैं और अपने सवालों के साथ उनका सवाल सुनते हैं। हेलो।
1: हेलो।
0: हाँ जी, कौन बोल रहे हैं?
1: हाँ, सबसे पहले तो एंकर मैम और वकील साहब दोनों को गुड आफ्टरनून।
0: गुड आफ्टरनून
1: जी, मेरा नाम राजेंद्र है और मैं करमपुरा दिल्ली से ही बोल रहा हूँ
0: जी।
1: तो मेरे दो सवाल हैं और अगर आपको इतराज ना हो तो एक छोटा सा सजेशन भी है
0: जी।
1: तो पहले सवालों पर आता हूँ।
0: सवाल पूछिए।
1: हाँ जी, पहला सवाल मेरा ये है कि मान लीजिए किसी लड़का लड़की की शादी हुई, वो बात अलग है अरेंज मैरिज हुई या लव मैरिज हुई, पर अब किसी गलत फैमिली से उनका तलाक करवा दिया गया, अब उनकी अलग अलग कहीं और शादी हो गई, अब फ्यूचर में वो दोबारा शादी करना चाहते हैं तो क्या मुमकिन है? इसमें कौन क्या कहता है, पहला सवाल मेरा। दूसरा सवाल मेरा ये कि जैसे वो फिल्म आई थी नगीना श्रीदेवी और दीदी होते ऐसी रेखा, वही हाल महाभारत में मिलता है समझने को कि भीष्म पितामह अपने देश का भाई चाहते थे, विभीषण जी अपने देश का भाई चाहते थे, और जो वहाँ के सीनियर थे।
0: अपना अपना सवाल सवाल पर आइए, एक्चुअली आपकी आवाज ब्रेक हो रही है फिलहाल।
1: जी। तो है बहू है या वो शख्स है देशभक्त इंसान, वो क्या करे? इसमें हमारे आईपीसी में क्या कहा गया है ये बताएं। और सजेशन प्लीज मेरा ये
0: सवाल है। अभी समझ नहीं आया आपका, सेकंड सवाल समझ में नहीं आया सर को।
1: सेकंड सवाल मेरा ये है कि जैसे कोई बहू है वो अपने भलाई चाहते ससुराल का, पूरी कुटुम्बदरी का, पूरी ज्वाइंट फैमिली का ही, पर जो वहाँ के सीनियर हैं उनको वो खल रही है, चुभ रही है, पिंच कर रही है, तो अब उसकी वजह से हर्ट हो रहा है उसको, तो बेचारी वो बहू क्या करे? या मतलब आईपीसी में क्या कहते हैं,
0: क्या कानूनी अधिकार है? चलिए ठीक है, आप सवाल का जवाब ले लीजिए क्योंकि फिर वो लंबा हो जाएगा। और सजेशन के लिए अभी हमारे पास हमारे एक्सपर्ट हैं, वो काफी कुछ सजेस्ट करके आपको जाएंगे। तो सर प्लीज बताइए।
2: इसके अंदर इन्होंने एक पहले क्वेश्चन किया था कि क्या वो दोबारा से उनके बीच में शादी हो सकती है?
0: हाँ
2: बिल्कुल शादी हो सकती है, क्योंकि जब एक बार ब्रेक डाउन हो गया तो दूसरी रीमैरिज जो है बिटवीन दोनों पार्टी आपस में कर सकती है, कोई
0: अच्छा।
2: दिक्कत नहीं है इसमें, क्योंकि लॉ तो सेम है, सिमिलर हिंदू मैरिज एक्ट है, उसके हिसाब से फिर इनकी मैरिज सेरेमनी हो सकती है। अच्छा, पर लेकिन सेक्शन 5 जो है हिंदू मैरिज एक्ट का, उसका भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा। पर लेकिन ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, दोनों हैप्पीली अपनी लाइफ निकाल सकती है रीमैरिज करके।
0: ओके।
2: और रहा उसका सवाल क्वेश्चन नंबर 2 आपने जो किया था कि समाज के जो लोग हैं वो उनको सरवाइव नहीं होने दे रहे, तो उनकी परवाह क्यों करते हो? आपको अपनी लाइफ चलानी है।
0: सर घर में ही कई बार होता है, उनका सवाल कहने का मतलब ये है कि घर में बहू मान लिया आई और जो घर के सीनियर्स हैं उनसे उसकी नहीं बन रही है और प्रॉब्लम हो रही है, तो ऐसे में बहू के लिए क्या कानूनी अधिकार है?
2: कानूनी अधिकार तो देखिए उनको तो मैक्सिमम अधिकार है, वो किसी भी मुद्दे पे इम्प्लीकेट कर सकती हैं बुजुर्ग आदमी को। बेहतरीन यह है कि बुजुर्ग आदमी भी थोड़े शांत रहें और बहू को भी अपना बड़ा टैक्टफुली अपने सीनियर्स को जो है हेल्प करनी चाहिए। दिस इज व्हाट आई वांट टू हेल्प फॉर द लाइफ।
0: ठीक है, सवाल यह है कि कानूनी अधिकार भी है?
2: कानूनी अधिकार तो सारे हैं उनको, यानी कि वो तो किसी भी चीज के अंदर वो इम्प्लीकेट कर सकती है, 498 का भी केस बना सकती है, 498 का डोरी
0: का क्या होता है,
2: डोरी का केस बना सकती है,
0: वो बना सकती है या फिर

0: मान लिया टॉर्चर किया जा रहा है, तो उसको क्या करना चाहिए?
1: उसको लड़की को अपनी प्रोटेक्शन लेनी चाहिए, पुलिस में कंप्लेंट करें, और बकायदा इनके पास में हेल्पलाइन नंबर दिए हुए हैं, उस हेल्पलाइन पे फोन करें, पुलिस जो है एरिया की इमीडिएटली आएगी और तुरंत उसमें एक्शन लेगी जो भी पॉसिबल होगा। इसी तरीके से अगर मान लीजिए ज्यादा ही टॉर्चर है,
0: मान लिया वर्बल टॉर्चर हो रहा है, कई बार होता है कि आप फिजिकली टॉर्चर नहीं हो रही है,
1: नहीं मेंटल टॉर्चर बोलते हैं इसको,
0: कि मेंटली टॉर्चर किया जा रहा है,
1: मेंटली टॉर्चर हरासमेंट वगैरह जो बोलते हैं, पर लेकिन उसके अंदर भी है ना, देखिए सबसे बड़ी चीज है कि पेशेंस जो है बहुत बड़ा टूल है। तो लड़की को अगर मान लीजिए ज्यादा टॉर्चर है, लिमिट से ज्यादा टॉर्चर है, लड़की अपने मायके में कुछ दिन के लिए चले जाए, जैसे सिचुएशन नॉर्मल होती है आ जाए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है,
0: यानी ब्रेक ले सकती है,
1: ब्रेक ले सकती
0: मर्जी से कोई डिसीजन जो उसको अच्छा लगता है वो कर सकती है।
1: अगर कोर्ट जाना चाहती है उसके ऊपर कोई स्ट्रॉन्ग एक्शन लेना है तो मैं तो एडवाइज नहीं करूंगा, क्योंकि कोर्ट में तो टाइम बर्बादी के सिवा और कुछ नहीं है, अच्छा भी एक्शन हो जाता है कभी कभी।
0: अब आपने मायके जाने की बात करी, और ऐसे में एक सवाल और आ गया इसी तरह का, नाम तो नहीं लिखा लेकिन लिखा है कि डज मैरिड वुमन हैज राइट टू लिव इन हर ओन पेरेंट्स होम इफ नीडेड, और कहने का मतलब ये है इनका कि हस्बैंड क्वेश्चन कर सकता है कि नहीं?
1: हाँ बिल्कुल क्वेश्चन कर सकता है, रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट सेक्शन 9 हिंदू मैरिज एक्ट बुला सकता है उसको। अगर मान लीजिए लॉन्ग स्टे करती है तो उसमें उसको हस्बैंड को राइट है और इसको जाना भी पड़ेगा उसके अंदर।
0: अच्छा वो अपनी मर्जी से पेरेंट्स के घर में नहीं जा सकती? मतलब
1: नहीं जा सकती है, पर लेकिन इतना लंबा स्टे, जैसे 2 साल 3 साल का अगर स्टे कर रही है तो डेट इज नॉट करेक्ट। आपको मैट्रिमोनियल लाइफ चलानी है तो बेहतरीन ये है कि
0: तो इसमें इसमें अधिकार दिए गए हैं जो
1: दोनों को, हस्बैंड एंड वाइफ दोनों को दिए हुए हैं।
0: ओके, यानी कितना समय तक रह सकती है वो?
1: ऐसा मान लीजिए 1 साल से ऊपर हो गया है ना, कंसेंटेड नहीं है दोनों का कि एक जाना चाहते हैं एक नहीं जाने देना चाहता, तो बेहतरीन है कि 1 साल के अंदर अंदर एप्लीकेशन लगा दे राइट टू रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स।
0: ओके, एक सवाल है कि जरूरी नहीं कि कार्यस्थल पर महिला के साथ शोषण हुआ हो, कभी कभी महिलाएं एक दूसरे को फंसाने के लिए हथियार के रूप में इस्तेमाल करती हैं ये अधिकार, तो ऐसे में पुरुष खुद को असहज महसूस करता है, इस विषय पर आप क्या कहेंगे?
1: देखिए
0: पैंथर तोमर लिख रहे हैं,
1: बिल्कुल आप सही कह रहे हैं इस पे
0: जी,
1: कि आजकल क्या चल रहा है, वो टेक्निक चल रही है कि किसी का व्हीकल का नंबर ले लिया या स्कूटी का नंबर ले लिया, कौन लड़का चला रहा है उसको फॉलो किया और उसकी कंप्लेंट बना के पुलिस को दे दी, पुलिस उसको सीज आउट कर लेती है और उसके हिसाब से फिर वो अपना 354 वगैरह का जो मुकदमा होता है वो दर्ज करती है। जब उसके बारे में जब कोर्ट के अंदर उससे क्वेश्चनिंग पूछी जाती है तो वो प्रॉपर आंसर नहीं दे पाते, तो उसके अंदर लड़के को तो परेशानी हो गई, उसका पैसा भी लग रहा है, हरासमेंट हो गई, और क्योंकि ये आजकल ब्लैकमेलिंग का धंधा बन गया है तो इसको भी जो है पुलिस आराम से चेज आउट कर लेती है, जैसे टीआईपी वगैरह के अंदर जो पार्टी है जो फेब्रिकेटेड केस बनाती है वो नहीं पहचान पाती, तब जाके उसको बेल मिलती है। तो थैंक गॉड कि जहां कहीं पे भी चलें आप सुरक्षित चलें ऐसे एलिमेंट से।
0: एक सवाल और आया इन्हीं का कि क्या विवाहित महिला का अपने पिता की संपत्ति में हिस्सा लेने का कानूनी अधिकार है?
1: हाँ बिल्कुल है।
0: ओके, ये तो मेरे ख्याल से अभी सभी को पता चल गया है और महिलाएं अधिकार पर हक भी जमाने लगी है। और एक सवाल ऐसा भी है कि औरत के दबाव में अगर आदमी आत्महत्या कर रहे हैं और आदमियों को औरत और औरतें भी मर रही हैं, इसके लिए कोई कानून है आदमी के लिए या नहीं? मतलब मेन इनका कहने का मतलब है, सवाल फ्रेम नहीं कर पाए लेकिन कहने का मतलब यही है कि क्या आदमियों के लिए भी कोई अधिकार है?
1: हाँ बिल्कुल है जी, वो अगर मान लीजिए कोई धमकी वगैरह देते हैं इसमें तो 506 के अंदर
0: आदमियों महिलाएं अगर उनको टॉर्चर कर रही हैं दबाव में आकर, अगर आदमी
1: 506 जो धमकी दे रही है जान से मारने के या कहीं इम्प्लीकेट करने के, तो आदमी इस सेक्शन में उनके विरुद्ध में जो है एप्लीकेशन लगा सकता है, तो कोर्ट उसके अंदर सुनता है और जो भी अप्रोप्रिएट स्टेप्स होते हैं पार्टी के खिलाफ।
0: वो लिए जाते हैं,
1: लिए जाते हैं।
0: तो चलिए, और किस तरह से इन बातों का समाधान निकल सकता है और महिलाओं के घर पर क्या क्या और अधिकार हैं, इससे जुड़े आपके जो सवाल हैं वो आप जानना चाहेंगे तो आप कॉल कर लीजिए या फिर फटाफट व्हाट्सएप मैसेज के जरिए भी भेज सकते हैं। थोड़ा सा टाइम बचा है, नंबर एक बार फिर से बता देती हूँ, 2342-1080 या 2342-1082। आज बात कर रहे हैं कार्यस्थल पर घर पर महिलाओं के कानूनी अधिकार, कार्यस्थल और घर पर महिलाओं के कानूनी अधिकार क्या क्या हैं। हमारे साथ हैं एडवोकेट दिल्ली हाई कोर्ट रमेश चंद जी, और आज उन्हीं के सारे गाने उन्हीं की पसंद के सुने जा रहे हैं। सुनते रहिए रेनबो हेल्पलाइन, आपके साथ हूं मैं बबिता त्रिपाठी।
2: तेरी दुनिया से होके मजबूर चला

0: वेलकम बैक. आज हम बात कर रहे हैं विमेंस लीगल राइट्स एट द वर्क प्लेस एंड होम. फिलहाल मेरा सवाल ये कि जस्टिस कैसे सीख करें, प्रोसेस क्या है, क्योंकि महिलाएं घर में कई बार बहुत सारी चीज़ें उनके दिमाग में आती हैं लेकिन उनको लगता है जाएं तो जाएं कहाँ, सबसे पहली शुरुआत कहाँ से करें. जी सर.
1: एक्चुअली अगर मान लीजिए उनको जस्टिस के लिए अपनी जो एप्लीकेशन है वो कोर्ट में लगानी पड़ेगी.
0: ओके, सीधे कोर्ट जाने.
1: हाँ, कोर्ट चले जाएं. पहले तो कोशिश करें कि पुलिस स्टेशन छोटे लेवल पे अगर जितना बने उतना बेहतरीन है, क्योंकि जितने ऊंचे लेवल पे हम जाते जाएंगे उतनी प्रॉब्लम जो है डिफिकल्ट भी होती चली जाती है.
0: अच्छा.
1: तो बेहतरीन यह है कि जहाँ तक हो, मैं तो यही कहूँगा कि आजकल मीडिएशन सेल्स वगैरह बनाए हुए हैं, एप्लीकेशन आप लगाइए और फिर मीडिएशन में जाके उसको सेटल कर लीजिए, तो वहाँ से भी आपको पूरी एक उम्मीद बनी रहती है. तो कोर्ट तो लास्ट अल्टरनेटिव हो जाता है किसी चीज़.
0: तो वही सबसे पहले उनको कहाँ शुरुआत करनी चाहिए.
1: शुरुआत तो वो अपने
0: छोटी मोटी लड़ाई है, छोटी
1: मोटी लड़ाई है तो
0: से.
1: लोकल एरिया के अंदर जो पुलिस स्टेशन है वहाँ पे बैठ जाएं, या फिर अपने एरिया के अंदर कोई RWA या कोई पंचायत वगैरह बनाई हुई है तो वहाँ पे आप सरपंच के पास मामले को ले जाके या फिर अपने रिश्तेदारों के बीच में बैठ के उसको सॉर्ट आउट करा ले.
0: ओके,
1: तो डेट इज द बेस्ट वे.
0: उसके बाद पुलिस
1: पुलिस तो लास्ट रिजोर्ट हो जाते हैं. पुलिस थाने वगैरह ये लास्ट रिजोर्ट हो जाते हैं.
0: ओके सर, घर पर जो समस्याएं उनको देखने को मिलती हैं वो ज़्यादातर यही होता है कि जो वो एक्सप्रेस नहीं कर पाती है. मतलब ऐसा होता है कि हो रहा है उनके साथ कुछ बट वो उनके पास सबूत नहीं है, तो ऐसे में क्या करें.
1: नहीं, सबूत तो बन जाते हैं, एफिडेविट लगा दीजिए.
0: अच्छा.
1: हाँ, डेट इज सफिशिएंट.
0: ओके, तो सबूत क्या, सिर्फ क्या क्या चीजें ऐसी हैं जो वो जो, बना सकती हैं.
1: नहीं, जो भी उनके साथ हो रहा है उसको एफिडेविट में फॉर्म करवा दें और उठा के उसकी एप्लीकेशन लगा दें.
0: ओके.
1: जो भी एरिया का SDM है उसके पास लगा दें, या जो भी कोर्ट है इसकी MM की कोर्ट है एरिया वाइज उसमें एप्लीकेशन लगा दें.
0: प्रूफ
1: के लिए तो बेस्ट मैंने बताया ना, एफिडेविट लगा दें उसका.
0: अच्छा.
1: एफिडेविट के अंदर वो अपने बयान दे दे कि मेरे साथ फलाने फलाने टाइम में ये घटना घटी है, इन्होंने मारपीट किया है, मेरा मेडिकल भी नहीं होने दिया, या जो भी परेशानी है उसको.
0: तो उसमें प्रूफ नहीं चाहिए होगा.
1: नहीं, प्रूफ मेडिकल तो करवा लेना.
0: अच्छा.
1: आजकल तो सरकारी हॉस्पिटल जगह जगह है, वहाँ चले जाए, वहाँ दिखा दे, अपने मेडिकल एग्जाम करवा लें. सरकारी हॉस्पिटल है वहाँ पे भी सारा.
0: मेंटल टॉर्चर का क्या,
1: मेंटल टॉर्चर का भी लिख के दे सकती हैं.
0: अच्छा.
1: हाँ, कि मेरे साथ ये मेंटल टॉर्चर है, मेरे को मेंटेनेंस खर्चा नहीं दे रहा है, अब मैं बच्चों को कैसे पालूं या फिर मैं अपना खर्चा कैसे चलाऊं. इट इज आल्सो ए पार्ट ऑफ मेंटल टॉर्चर.
0: ओके, तो इस तरह की चीजें होती हैं. तो सबसे शुरुआत में पहले तो कोशिश यही करनी चाहिए उनको कि अपने लेवल पर या अपने अपनों के बीच में बैठकर सॉर्ट आउट करें, अदरवाइज वो पुलिस की हेल्प ले सकती हैं.
1: पुलिस के
0: और उसके बाद अगर मान लिया कभी ऐसी सिचुएशन आती है जब अचानक उनको उनके साथ कुछ ऐसा हो रहा है और उनको तुरंत इमरजेंसी में कोई हेल्प चाहिए, फिर क्या करें.
1: तो उसमें हेल्पलाइन नंबर है, उस पर वो फोन करें.
0: हेल्पलाइन नंबर
1: 1091
0: ये नंबर अक्सर मिल जाता है.
1: मिल जाते हैं. Okay. कोई दिक्कत नहीं है.
0: 1091 ये नंबर है जिसका सहारा वो ले सकती हैं और अपनी जो कंप्लेंट है वो करवा सकती हैं. वैसे सर, एक जो दिमाग में मेरे पास अभी दिमाग में सवाल आ रहा है कि घर की जो महिलाएं हैं वो क्या ज्यादा बाहर निकलकर अपना जो जस्टिस है या अपने अधिकारों के प्रति इतनी सचेत या जागरूक होती हैं. आपके पास जो केसेस आते हैं आपको क्या लगता है, या वर्किंग जो महिलाएं हैं वही आती हैं ज्यादातर अपने केसेस.
1: देखिए, हमारे पास तो हर तरीके के केस आते हैं और केस टू केस बेसिस पे हम खुद भी सीख जाते हैं कि हमें कैसे हैंडल करना है.
0: Okay.
1: और ज्यादातर तो इस मामले में जो लेडीज जज जो होती हैं बड़ी हेल्प करती हैं.
0: अच्छा.
1: तो पूरी जो सुरक्षा कवच जो है, लेडीज जो जज हैं बहुत मदद करती हैं.
0: Okay.
1: अब मेरे पास एक केस आया था, मैं जैसे अभी डिस्कस कर रहा था, लड़की जो थी मोमडन थी, हस्बैंड जो था उसको लेके नहीं जा रहा था, उसने ऑलरेडी एक कोर्ट रखी हुई थी. तो किसी मीडिएटर के थ्रू आया तो उन्होंने कहा भाई साहब इसमें कुछ मदद कीजिए. हमने कहा कोई दिक्कत नहीं है. तो हमने सीधा बताया कि भाई हम देखो इसके अंदर डाइवोर्स का केस डालेंगे और फिर इसको हम मीडिएशन पे लेके आएंगे. मीडिएशन पे लेके आए, वहां पे वो सेटराइट हो गया.

0: इस हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट यही रहता है कि भाई किसी का घर खराब ना हो और लड़की को जो है पूरी सुरक्षा मिले। जब हमने खर्चे का केस उस पर डाला तो उस पर दबाव आया कि भाई तुझे खर्चा देना है और जितनी भी तेरी आइटम है सब सीज हो जाएंगी। तो अल्टीमेटली भी उसने बात मानी और आज देखो दोनों का घर अच्छा चल रहा है, मीडिएटर भी खुश था जो लेके आया था, जबकि उस लड़की के माँ बाप भी नहीं थे। तो बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो मदद करते हैं महिलाओं की, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जाके मदद करते हैं, जबकि उनका कोई वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं था, फिर भी उन्होंने मदद की उसकी लड़की की।
1: ओके सर, ये कई बार उल्टा भी हो जाता है, मदद नहीं मिलती है और या लोग अच्छे नहीं मिलते हैं, तो ऐसे में भी प्रॉब्लम वर्स्ट हो जाती है महिलाओं की, तो वो ऐसे जाने से कतराती हैं। कई बार उनके साथ कुछ ऐसा हो जा रहा होता है लेकिन वो बाहर निकलने में कतराती हैं कि पता नहीं हेल्प मिलेगी या नहीं मिलेगी।
0: देखिए अगर आप थोड़ा सा अपने दिमाग को ब्रॉड करना पड़ेगा ना,
1: कोशिश करनी पड़ेगी,
0: तभी ये समस्याओं का समाधान होगा, अदरवाइज नहीं तो
1: जी। वेस्ट बंगाल से एक मैसेज आ रहा है सादिर का, उन्होंने लिखा है कि मेरा सवाल है कि अगर किसी की बीबी अपनी पति से अपने पति पर झूठा केस की धमकी देती है और बार बार ये बात बोलने पर उसे क्या करना चाहिए, यानी पति को क्या करना चाहिए?
0: पति को तो ये चुपचाप बैठ जाना चाहिए।
1: अच्छा
0: हाँ, अगर वो ज्यादा उछल कूद मचाएगा ना तो प्रॉब्लम उसको ज्यादा होगी।
1: अच्छा
0: हाँ, क्योंकि ला जो है उनके फेवर में है। सीधा मोटा सा फार्मूला है, 354 लगा दो, 498 लगा दो, भुगतता है सारी जिंदगी। तो बेहतरीन ये है कि थोड़ा शांत चले, ज्यादा एलिगेशंस लगाना छोड़े।
1: नहीं, महिलाएं अगर लगाने लग जाए पति पर, उन्होंने कहा
0: मैं कह रहा हूं,
1: महिला
0: वही तो, मैं कह रहा हूँ कि महिलाएं अगर एलिगेशंस पति पे लगाती हैं तो वो ठीक नहीं है।
1: महिलाएं ठीक नहीं है, बट पति क्या अपना अधिकार लेने के लिए क्या करेगा वो?
0: उसको तो यह है कि कोर्ट की शरण लेनी पड़ेगी, लास्ट रिजोर्ट तो वही है कि भाई मेरी वाइफ मुझे परेशान कर रही है इस तरीके से, मेरा आना जाना मुश्किल हो गया है, ड्यूटी से मैं आ जा नहीं सकता, मैं कैसे सर्वाइव करूंगा अपने बच्चों को और अपने आप को। तो बेस्ट ये है कि या तो वो सेपरेशन ले ले अंडर सेक्शन 10 के अंदर, दोनों अलग हो जाएं, तो तभी पॉसिबल हो सकता है। क्योंकि देखिए बिना लीगल हेल्प के आज के टाइम में मैंने देखा है कि घर भी नहीं चल पा रहे। हर कदम पे लीगल हेल्प चाहिए, चाहे घर हो या बाहर हो, ऑफिस में भी यही एनवायरनमेंट है।
1: तो चलिए, आपने बहुत सारे सवालों का बहुत बखूबी जवाब दिया सर, आप स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: थैंक यू।
1: तो ये थे रमेश चंद जी, जो कि हैं एडवोकेट दिल्ली हाई कोर्ट में, और आज बात की कार्यस्थल और घर पर महिलाओं के कानूनी अधिकारों पर। इसी के साथ मुझे यानी बबीता त्रिपाठी को भी दीजिए इजाज़त, आशियाना लेकर रश्मि आ गई हैं और उनके साथ रहिएगा और इंजॉय करते रहिए आकाशवाणी रेनबो दिल से दिल तक।

और अब प्रस्तुत है इस घंटे के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जकार्ता में इंडोनेशिया के सर्वोच्च सम्मान बिंटांग आदिपूर्णा से भी सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबावो सुब्रियांतो के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। इसमें महत्वपूर्ण खनिजों, प्रौद्योगिकी, खाद्य सुरक्षा, दवाओं और समुद्री सुरक्षा सहित कई क्षेत्रों में समझौते किए गए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज राष्ट्रीय राजधानी में हरियाली बढ़ाने के उद्देश्य से एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत दिल्ली में 70 लाख पौधे लगाने के मिशन का शुभारंभ किया। भारत कल से केरल के कोच्चि में शुरू होने वाली दो दिवसीय ब्रिक्स महिला मंत्रिस्तरीय बैठक की मेजबानी करेगा। बैठक के दौरान ब्रिक्स सदस्य देशों के मंत्री सहयोग को मजबूत करेंगे और अपने अपने ब्रिक्स अध्यक्षों के नेतृत्व में महिला नेतृत्व वाले विकास के लिए एक साझा दृष्टिकोण को आगे बढ़ाएंगे। गुजरात उच्च न्यायालय ने 2008 के अहमदाबाद सिलसिलेवार बम विस्फोटों के मामले में 38 आरोपियों की मौत की सजा और 11 अन्य की आजीवन कारावास की सजा को बरकरार रखा है। प्रवर्तन निदेशालय ने तृणमूल कांग्रेस के बैंक खातों में संदिग्ध धनराशि के हेरफेर और अनियमित वित्तीय लेनदेन के मामले में आज कोलकाता और उसके आसपास के 5 परिसरों पर तलाशी ली। श्री अमरनाथ जी यात्रा का छठा जत्था आज सुबह जम्मू के भगवती नगर आधार शिविर से कड़ी सुरक्षा के बीच रवाना हुआ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में डूरंड कप टूर्नामेंट 2026 की ट्रॉफी को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। और पुरुष क्रिकेट में आज इंग्लैंड के नॉटिंगहम में तीसरे T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच में भारत का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। तो ये थे अभी तक के FM रेनबो मुख्य समाचार।

0: आकाशवाणी
1: जी हाँ, और आकाशवाणी के FM रेनबो 102.6 पर हाजिर हो गई हूँ मैं, आपकी अपनी दोस्त, आपकी अपनी होस्ट रॉकिंग रश्मि। और प्रोग्राम कौन सा है? प्रोग्राम है वही जाना पहचाना हमेशा की तरह, जो आता है 2 बजे, लेकर आते हैं हम आपका अपना आशियाना। जी हाँ, और पता है आपको, बाहर आज जो मौसम है ना, इतना ज़बरदस्त है, इतना ज़बरदस्त है कि मैं आपको क्या बताऊँ। तो इससे पहले कि कुछ और बात करूँ, क्यों ना इस बारिश की जो छमछम मैं अभी देख कर आई हूँ ना, उसे उसके साथ में हम भी थोड़ा सा झूम लें, नाच लें, गा लें और मौज मस्ती कर लें। चूँकि जो बारिश का मौसम जब आता है ना, बहुत कुछ अपने साथ में लेकर आता है और साथ साथ लेकर आता है कुछ परेशानियाँ भी। और ख़ास तौर पर जो हमारी हम ऐसे जो लोग हैं, यानी कि हम जो आधी आबादी जिसे कहा जाता है, जिसे हम फीमेल्स जो होती है ना, उनके लिए जो फैशन होता है ना, उसका तो हो जाता है बस क्या जानते हैं ना। तो आज ऐसे ही फैशन टिप्स के साथ रहूंगी इस प्रोग्राम में, आपके साथ जुड़ी रहूंगी। तो जाइए कहीं नहीं, क्योंकि आपको हमारे साथ यहीं पर करनी है छमछम, कुछ ऐसे कुछ

जी हाँ बिल्कुल, नाचिए गाइए, जरूर धूम मचाइए, छम छम। लेकिन जब ये मानसून का मौसम आता है ना, तो किसी को परेशानी हो या ना हो, लेकिन हम फीमेल्स को बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। तो मैंने सोचा आज क्यों नहीं हमारी जैसी जो और महिलाएं हैं, जो लेडीज़ हैं, जो गर्ल्स हैं, जो हमेशा टिप टॉप रहना चाहती हैं और चाहती हैं कि उनकी फैशन जो सेंस है ना, वो लोगों को नज़र आए, बारिश के मौसम में भी वो बिल्कुल भी परेशान ना हो, तो आपके लिए लेकर आई हूँ छोटे छोटे कुछ टिप्स। भाई कोशिश कीजिए बारिश के मौसम में ना, मानसून के मौसम में, ऐसे कपड़े चुनिए जो हल्के हों, हल्के कलर के हों, हवादार हों और जल्दी सूख जाएं। कोशिश कीजिए कि बजाय कि आप सूती कपड़ों के या मोटे कपड़े

0: कि जो मोटा स्टफ होता है आप शिफॉन का, जॉर्जेट का, क्रेप या फिर नायलॉन ब्लाइंड जैसे फैब्रिक जो होते हैं ना वो पहने, क्योंकि ये जो कपड़े होते हैं ना वो शरीर से चिपक नहीं जाते। चिपकने के बाद क्या होता है कि आप आराम से मूवमेंट भी नहीं कर पाते और आपको बड़ा मतलब अजीब सा महसूस होता है, होता है ना। एक और बहुत ही आसान और बहुत ही ज़रूरी टिप ये भी है कि बारिश के मौसम में ना कोशिश कीजिए कि आप लंबे कपड़े और ख़ास तौर पे जो ज़मीन से छूने वाले जो कपड़े होते हैं ना, जस्ट लाइक प्लाजो जैसे आजकल चल रहे हैं, उनसे आप बचिए। कोशिश कीजिए ऐसी ड्रेसेस पहनिए जो घुटने तक हो या आपके टो तक हो, जैसे मिडी ड्रेसेस हो गई या शॉर्ट कुर्तीज़ हो गई। कॉर्ड सेट आजकल बहुत चल रहे हैं, आप वो ले सकते हैं इंस्टेड के आप मैक्सी ड्रेसेस पहने या फिर गाउन पहने, राइट। तो आई थिंक आप मेरी इस बात से बिल्कुल मतलब इत्तेफाक रखते होंगे कि हाँ ऐसा है और वाकई में हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। कलर्स के बारे में भी थोड़ा सा मतलब मैं बताना चाहूँगी कि इस मौसम में ना अक्सर लोग सोचते हैं कि हम लाइट कलर पहने कि गर्मी हो जाती है, ह्यूमिडिटी हो जाती है, तो क्या वाकई में हमें लाइट कपड़े पहनने चाहिए, बताऊँगी। लेकिन उससे पहले आपको सुनाऊँगी एक प्यारा सा गीत, लेकिन उस गीत से पहले कुछ और भी है आपके लिए, एक छोटा सा ब्रेक।
1: प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: महकी महकी जोश है जबरदस्त, ये चाय बड़ी है मस्त।
2: पता का चाय, गजब का स्वाद।
3: आप सुन रहे हैं प्रोग्राम आशियाना, और आशियाना में आज आपको छोटे छोटे थोड़े से प्यारे से फीमेल्स के लिए फैशन टिप्स देने के लिए आई हूं मैं आपके पास, आपकी अपनी रॉकिंग रश्मि।

भाई मौसम कोई भी हो, लेकिन जो हम लेडीज़ होती हैं ना, फीमेल्स होती हैं, गर्ल्स होती हैं, ख़ास तौर पे कॉलेज ऑफिस जाने वाली जो गर्ल्स होती हैं ना, उन्हें बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा लगता है कि वो किसी भी मौसम में जाएं। यदि घर से बाहर निकल रही हैं ना, तो शी वुड बी लुकिंग स्टाइलिश, और उनके जो कपड़े हैं ना वो पूरी तरह से आरामदायक होने चाहिए। लेकिन मॉनसून के सीज़न में अक्सर प्रॉब्लम क्या होती है कि घर से बाहर निकलते हैं तो थोड़ा सा कीचड़ या फिर किसी तरह की इस तरह की परेशानी होती है, पानी से भी वो गंदे हो जाते हैं। इसीलिए मैंने आपको कहा कि कपड़ों की जो लंबाई होनी चाहिए ना, वो लंबी नहीं होनी चाहिए, इनकी ज़मीन से छूती हुई नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर एक चीज़ और भी देखने वाली है, कुछ लोगों को शौक होता है या उन्हें लगता है गर्मी और ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है, उमस बहुत ज़्यादा है, तो हमें लाइट कलर के कपड़े पहनने चाहिए। तो आपको एक चीज बता दूं कि जब भी हम कोई भी लाइट कलर के कपड़े पहनते हैं, पेस्टल कलर्स पहनते हैं ना, और यदि आप बारिश में भीग जाते हैं तो भीगने से ये ट्रांसपेरेंट यानी कि पारदर्शी हो जाते हैं और उन पर कीचड़ के दाग आसानी से दिखते हैं। तो कोशिश कीजिए जब भी आप बारिश के मौसम में बाहर निकलें तो आप नेवी ब्लू, ब्लैक, ऑलिव ग्रीन या फिर ब्राइट नियॉन कलर्स ट्राई करें। ट्राई कीजिए एक बार मेरे कहने से, आप यकीन मानिए आपको लगेगा कि हाँ, जो रश्मि ने बोला था ना, बिल्कुल सही बोला था। ना केवल वो आपको ट्रांसपेरेंसी से दिखाएंगे कि आपको कहीं पर भी कोई ऑकवर्ड मोमेंट आपके सामने ना आ जाए, और साथ साथ जो कीचड़ या कोई भी गंदे पानी के दाग यदि उस पर लग जाते हैं ना, तो वो आसानी से किसी को दिखाई भी नहीं देंगे। और एक साथ साथ एक और बहुत ज़रूरी टिप ये है कि कुछ लोगों को रहता है कि हम जीन्स पहनते हैं ना, तो बस हमें जीन्स ही पहननी है। पर जीन्स पहनने का भी कुछ, या एक कह लीजिए कि जो ट्राउज़र्स पहनने का एक तरीका हो सकता है बारिश के मौसम में, वो क्या रहेगा वो भी मैं आपको बताऊँगी। लेकिन उससे पहले सुनते हैं ये प्यारा सा ट्रैक। बताया ना मैंने, घाघरा नहीं पहनना है, लॉन्ग स्कर्ट नहीं पहननी, लॉन्ग गाउन नहीं पहनना, लेकिन डांस तो कर सकते हैं ना यदि घर पर हैं तो, राइट।

वेल, इन्होंने तो सोच लिया है कि इन्हें लाल घाघरा पहनना ही पहनना है भाई। हो सकता है उनके घर में कोई पार्टी हो, फंक्शन हो, और इन्हें घर से बाहर जाना ही नहीं हो, तो पहनिए भाई, जो आपका मन करे वो पहनिए। लेकिन यदि आप निकल रहे हैं घर से बाहर और बाहर है बारिश का सीज़न, बारिश या तो सुबह हुई है या शाम को हुई है या जिस वक्त आप निकलने वाले हैं उस टाइम हो रही है, तो डेफिनेटली आपको थोड़ा सा ख्याल तो रखना ही पड़ेगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि कुछ लोगों को होता है कि हम तो ट्राउज़र्स ही पहनते हैं या जीन्स पहनने का ही शौक है, और वो नहीं चाहते कि वो कोई और आउटफिट ट्राई करें उस टाइम पर, तो उनके लिए एक छोटा सा सजेशन ये है कि कोशिश कीजिए कि आप टाइट फिट जो जीन्स होती है या फिर भारी मोटे कपड़े वाला जो डेनिम होता है प्रॉपर, वो पहने ना, यानी कि वो पहनने से आपको बचना पड़ेगा, क्योंकि इन दोनों को ही ना सूखने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। टाइट फिटिंग जो होती है उसमें आपको बिल्कुल, अगेन वो बिल्कुल बॉडी से चिपक जाती है, तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, और भारी डेनिम होगा तो डेफिनेटली वो नहीं सूख पाएगा। तो कोशिश कीजिए, जैसे कि ढीली पैंट्स होती हैं आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग है कि लूज पैंट्स का, या मतलब काफ़ी ढीली पैंट्स का फैशन है, साथ में कार्गोज आप ट्राई कर सकते हैं, कॉटन ट्राउजर्स भी आप पहन सकते हैं। और हालांकि मैंने आपको बताया है कि कॉटन के कपड़े कोशिश कीजिए मत पहनिए, लेकिन यदि आप लाइनिंग वाले पहनते हैं या फिर आप थोड़ा सा उनमें सिंथेटिक टच हो, नाइलॉन टच हो, तो डेफिनेटली आप वो वाले ट्राउजर्स भी ट्राई कर सकते हैं। और रही बात यदि फुटवेयर की, आप सोचेंगे भाई बारिश का मौसम है तो अब मेरे फुटवेयर ख़राब ना हो जाए, तो इंस्टेड कि आप चमड़े यानी कि लेदर के आप अपने फुटवेयर पहने, स्नीकर्स पहने, आप छोड़ दीजिए उन्हें। इनकी बजाय आप वाटरप्रूफ सैंडल्स पहन सकते हैं, जेली शूज़ पहन सकते हैं, या फिर रबर स्लीपर्स भी पहन सकते हैं। ट्रेंडिंग बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं फैशन में उस तरह की भी, तो आपको रबर स्लीपर्स में भी बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग स्लीपर्स मिल जाएंगी, जो कहीं से भी ऐसा नहीं लगेगा कि आपके आउटफिट से मिसमैच हैं। तो ऐसा ही मैच मिलाने के लिए आपके फैशन को, आपके कपड़ों को, आपके फुटवेयर को मैं आई हूँ आज आपके पास आशियाना लेकर, आपकी अपनी रॉकिंग रश्मि।

वेल, हाई हील्स तो बिल्कुल भी ट्राई मत कीजिएगा यदि आप बारिश के मौसम में बाहर निकल रहे हैं. लेकिन यदि आप सोचिए कि मैं मुझे कुछ बैग लेकर जाना है, तो ऑब्वियस सी बात है कोई भी कॉटन या फिर कपड़े का झोला आपको बिल्कुल नहीं लेकर जाना है. कोई बैग जो कॉटन फैब्रिक का हो या इस तरह के स्टफ़ का हो नहीं लेकर जाना है. इंस्टेड कि आप वाटर प्रूफ कोई ट्रेंडिंग बैग ले सकते हैं, क्रॉस बॉडी बैग ले सकते हैं, किसी पाउच का इस्तेमाल कर सकते हैं. और साथ साथ सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो है वो है कि आप अपने साथ में एक छाता, चाहे कलरफुल या फिर आप यदि थोड़ा और स्टाइलिश दिखना चाहते हैं तो आप ट्रांसपेरेंट अम्ब्रेला का भी यूज़ कर सकते हैं. देखिए कितने अच्छे अच्छे टिप्स लेकर आज मैं आपके साथ आई थी. लेकिन अब मुझे जाना पड़ेगा, फ़िलहाल के लिए जाना पड़ेगा. लेकिन हाँ, एक बार फिर से आपके साथ रहूँगी प्रोग्राम अल्फा जेन में 4:02 से, और 4 बजे से ही वैसे रहूँगी आपके साथ. लेकिन फ़िलहाल रश्मि को दीजिए इजाज़त, क्योंकि एक ट्रेंडिंग सा सॉन्ग, एक प्यारा सा सॉन्ग आपके लिए लेकर आई हूँ, और उसके बाद रहेगा आपके लिए एक स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम.

0: संबंध
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है कार्यक्रम उमंग में। नमस्कार, मैं हूँ विमलेश।
1: और मैं हूँ अजीत। नमस्कार श्रोताओं, आइए सुनते हैं सुविचार जिसे हमें भेजा है गुजरात गांधीग्राम से प्रवीण सोनी और कलावती सोनी जी ने। लिखते हैं,
2: संभव कार्य करने के लिए ताकत चाहिए, किंतु असंभव कार्य करने के लिए आत्मविश्वास और समर्पण चाहिए।
1: बहुत सुंदर विचार, आप सबको धन्यवाद। आइए सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है छत्तीसगढ़ लुकाऊपाली छतवन से पुनीत राम सूर्यवंशी, निर्मला सिंह, निहारिका सिंह और पंकज सिंह सूर्यवंशी।
2: हिंगोली महाराष्ट्र से शाहजी बोड़खे, नंदा बोड़खे और हनुमान बोड़खे।
1: और ऑक्सीजन पार्क राहुल नगर अमरावती महाराष्ट्र से सिद्धार्थ गोंडाणे, अर्चना ताई गोंडाणे, हीरामण शेंडे, प्रणय प्रसिद्धि और प्रतिभा गोंडाणे।
2: संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव और ओजस्वी यादव।
1: रानीगांव नगरी छत्तीसगढ़ से खिलेश कुमार साहू।
2: और राधे नगर अकोला महाराष्ट्र से राजेश पी कारिया जी।
1: बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं, आप सबका संदेश भेजने के लिए। आपसे निवेदन है इसी प्रकार से जुड़े रहिए हमारे आपके सबके प्यारे कार्यक्रम उमंग से। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारी आपकी सबकी प्यारी श्रृंखला ये भी जानिए कि अगली कड़ी में।
2: श्रोताओं, पिछले सप्ताह हमने चर्चा की थी विभिन्न खनिजों के बारे में। आशा है आपको जानकारी पसंद आई होगी। यदि आई तो जरूर लिख भेजिएगा अपनी प्रतिक्रियाएं।
1: जी
2: तो अजीत जी, क्यों न इस सप्ताह हम चर्चा करें एक ऐसी चीज की जो हम सबके चारों ओर उपलब्ध है, वो हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी भी है, लेकिन
1: जी लेकिन उनके बारे में हम बहुत कम जानते हैं। श्रोताओं, हम बात कर रहे हैं पेड़ों की।
2: जी,
1: आज हम चर्चा करेंगे पेड़ों के बारे में और लेंगे उनके बारे में दुर्लभ जानकारियाँ। तो आइए शुरू करते हैं विमलेश जी से।
2: जी अजीत जी, तो श्रोताओं आपको बता दें, पेड़ हमारे ग्रह यानी पृथ्वी के सबसे पुराने बड़े और महत्वपूर्ण जीव हैं। इनकी उत्पत्ति लगभग 40 करोड़ साल पहले हुई थी। ये जानवरों और मनुष्यों की उत्पत्ति से भी बहुत पहले के हैं।
1: जी विमलेश जी, प्राप्त दुर्लभ जीवाश्मों से पता चलता है कि पेड़ पौधों के पैदा होने के लगभग 40 करोड़ वर्षों के बाद मनुष्य और शेष जीव जगत अस्तित्व में आया।
2: जी
1: विमलेश जी, एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न मेरे मन में है और वो ये है कि पेड़ों की उत्पत्ति से पृथ्वी पर क्या परिवर्तन आए।
2: जी अजीत जी, सचमुच ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। पेड़ों की उत्पत्ति से पृथ्वी पर ऑक्सीजन बढ़ी, मिट्टी बनी और कार्बनिक गैसें कम हुई, जिनसे जानवरों के लिए भूमि पर रहना आसान हुआ। बिना पेड़ों के ऑक्सीजन कम मिलती, जिसके कारण स्थलीय जीवों का रहना असंभव हो जाता।
1: जी तो ये तो बात हुई पेड़ पौधों की उत्पत्ति की।
2: जी
1: चलिए अब जानते हैं पेड़ों के बारे में कुछ रोचक बातें। इनकी दुनिया ऐसे दुर्लभ और अनोखे रहस्यों से भरी है जो श्रोताओं सचमुच हमें हैरान कर देंगी।
2: जी सचमुच। तो श्रोताओं आपको बता दें कि पेड़ों का अपना सोशल नेटवर्क होता है, जिसे वनस्पति विज्ञानी वुड वाइड वेब कहते हैं।
1: अरे वाह, वुड वाइड वेब यानी यहाँ भी इंटरनेट की तरह www है।
2: जी
1: लेकिन विमलेश जी, ये होता क्या है?
2: अजीत जी, ये कोई इंटरनेट नहीं है, लेकिन पेड़ों और पौधों के बीच भूमिगत संचार का प्राकृतिक जाल है।
1: जी हमने अक्सर मातृ वृक्षों के बारे में सुना और जाना है।
2: बिल्कुल,
1: मातृ वृक्ष उन्हें कहते हैं जो वृक्षों के समूह में सबसे बड़े और पुराने होते हैं। उनकी जड़ें सूक्ष्म कवक या फंगस द्वारा दूसरे पेड़ों से जुड़ जाती हैं।
2: जी
1: इसके माध्यम से पेड़ आपस में पानी, पोषक तत्व और रासायनिक संदेश एक दूसरे को भेज सकते हैं।
2: जी ये जड़ें कमजोर या छोटे पौधों को पानी और अन्य पोषक तत्व भेजती रहती हैं। ऐसे पेड़ों को मातृवृक्ष इसलिए कहते हैं क्योंकि वे एक माता की तरह दूसरे पेड़ पौधों का पालन पोषण करते हैं। तो ये तो बात हुई पोषक तत्वों की। अजीत जी, आपने कहा कि पेड़ एक दूसरे को रासायनिक संदेश भी भेजते हैं, इसे जरा श्रोताओं को तो बताइए।
1: जी विमलेश जी, ये जानना सचमुच बहुत रोचक होगा। देखिए, पेड़ पौधे बोल तो नहीं सकते, लेकिन वे रासायनिक संकेतों के माध्यम से एक दूसरे को हवा और कवकों के माध्यम से संदेश भेजते हैं।
2: जी
1: ये प्रकृति की अद्भुत व्यवस्था है।
2: श्रोताओं इसे एक उदाहरण से समझते हैं। जब किसी पेड़ या पौधे पर कीटाणु हमला करते हैं तो वे पत्तियों द्वारा हवा में एक विशेष प्रकार का रसायन छोड़ते हैं, जिसे दूसरे पौधे या पेड़ मानो सूंघ लेते हैं और वे पहले से ही रक्षा रसायन बनाना शुरू कर देते हैं
1: और इस प्रकार से उन्हें आने वाले खतरे की चेतावनी मिल जाती है। इससे उनकी रक्षा प्रणाली सक्रिय हो जाती है। वैज्ञानिकों ने ये भी पाया है कि पेड़ पौधों में बहुत धीमे विद्युत संकेत भी कार्य करते हैं।
2: तो श्रोताओं, पेड़ों के बीच का संचार मूक है लेकिन बहुत प्रभावशाली होता है। वे बेशक शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन रसायनों, आपस में जुड़ी हुई जड़ों, कवकों और विद्युत संकेतों द्वारा वे आपस में संवाद कर सकते हैं।
1: एक बात और श्रोताओ, पेड़ पौधों में भी रोगों या चोट के विरुद्ध प्रतिरोधक क्षमता होती है। जब उनकी छाल कटती है या छीली जाती है तो वे एक प्रकार का रसायन बनाकर अपने घाव को भरने का प्रयास करते हैं।
2: जी।
1: इसलिए आपने देखा होगा कि जब इनकी छाल छीली जाती है तो कुछ समय बाद वहाँ नई छाल विकसित हो जाती है। ये ऐसा ही है जैसा कि हमारा शरीर भी प्राकृतिक रूप से घावों को भर सकता है।
2: इसलिए जंगल केवल पेड़ों का समूह नहीं बल्कि एक दूसरे से जुड़े जीवित समुदाय की तरह कार्य करता है। तो श्रोताओ, कैसी लगी ये जानकारी, हमें जरूर बताइएगा। और अब सुनिए आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से।
1: तो आज का प्रश्न है श्रोताओ, मातृ वृक्ष किसे कहते हैं और क्यों? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
2: मातृ वृक्ष किसे कहते हैं और क्यों?
1: आप हमारे IBRS नंबर यानी 8800440559 पर और हमारे ईमेल यानी audio@cieet.nic.in पर अपने संदेश भेज सकते हैं। और अब बारी है हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों की, तो आइए सुनते हैं एक खूबसूरत गीत संगीत से भरा कार्यक्रम चींटी।
2: ये कार्यक्रम हिंदी की पाठ्य पुस्तक की एक कविता पर आधारित है जिसमें चींटी के परिश्रम और दृढ़ संकल्प के बारे में एक सुंदर गीत द्वारा बताया गया है तथा बच्चों को प्रोत्साहित किया गया है कि वे भी अपने जीवन में निष्ठा और दृढ़ संकल्प के साथ अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ें।
1: तो आइए सबसे पहले सुनते हैं इस कविता का वाचन बच्चों के साथ। हर पल चलती जाती चींटी,
3: हर पल चलती जाती चींटी,
1: श्रम का राग सुनाती चींटी,
3: श्रम का राग सुनाती चींटी,
1: कड़ी धूप हो या हो वर्षा,
3: कड़ी धूप हो या हो वर्षा,
1: दाना चुनकर लाती चींटी,
3: दाना चुनकर लाती चींटी,
1: सचमुच कैसी कलाकार है,
3: सचमुच कैसी कलाकार है,
1: घर को खूब सजाती चींटी,
3: घर को खूब सजाती चींटी,
1: छोटा तन पर बड़े इरादे,
3: छोटा तन पर बड़े इरादे,
1: छोटा तन पर बड़े इरादे,
3: छोटा तन पर बड़े इरादे,
1: नहीं कभी घबराती चींटी,
3: नहीं कभी घबराती चींटी,
1: नन्हे नन्हे पैर बढ़ाकर,
3: नन्हे नन्हे पैर बढ़ाकर,
1: पर्वत पर चढ़ जाती चींटी,
3: पर्वत पर चढ़ जाती चींटी,
1: काम बड़े करके दिखलाती,
3: काम बड़े करके दिखलाती,
1: जहाँ कहीं अड़ जाती चींटी,
3: जहाँ कहीं अड़ जाती चींटी,
1: मेहनत ही पूजा है प्रभु की,
3: मेहनत ही पूजा है प्रभु की,
1: हमको यही सिखाती चींटी,
3: हमको यही सिखाती चींटी।
1: अभी आपने सुना इस कविता का वाचन, आइए अब सुनते हैं इसी कविता की संगीतमय प्रस्तुति।

0: तो सुना आपने, कैसा लगा ये गीत? अच्छा लगा ना? तो अब सुनते हैं चींटियों के बारे में कुछ और मजेदार बातें। चींटियां बहुत मेहनती होती हैं। वे समूह में यानी मिलजुल कर काम करती हैं। और तो और, आपको मालूम है अकेली चींटी अपने वजन से 50 गुना अधिक वजन उठा सकती है। इतना ही नहीं, आपने जरूर देखा होगा कि यदि कोई चींटी वजन नहीं उठा पाती तो दूसरी चींटियां तुरंत उसकी मदद के लिए आ जाती हैं। है ना मजेदार बात? तो क्या सिखाती हैं हमें ये चींटियां? हमें हमेशा मिलजुल कर रहना और मेहनत से काम करना चाहिए। अच्छा, अब आपके लिए कुछ सोचने और करने को। जरा मालूम कीजिए कि चींटियां कितने रंगों की होती हैं। एक बात और, इस कविता में चींटी को कलाकार कहा गया है। जरा सोचिए और बड़ों से भी पूछिए कि उन्हें कलाकार क्यों कहा गया है। अभी आपने सुना ये खूबसूरत गीत चींटी, और आइए सुनते हैं अगला कार्यक्रम। कार्यक्रम का शीर्षक है नील के किनारे।
1: इस कार्यक्रम में मिस्र की प्राचीन सभ्यता के विकास में नील नदी की भूमिका के बारे में बताया गया है।
2: Your attention please. Air India announces the arrival of its flight number AI-806 from Bombay. Your attention please. Air India announces the
3: पापा, कायरा का ये हवाई अड्डा कितना शानदार है।
4: हाँ बेटा।
3: दादाजी तो कहीं दिखाई नहीं दे रहे।
4: यही कहीं होंगे, अभी मिल जाएंगे। अच्छा चलो, सामान की ट्रॉली लेकर उधर से निकल चलते हैं।
3: मुझे लगता है दादाजी आए ही नहीं। याद है जब हम उनके पास मॉरिशस गए थे ना, तब भी वो हमें लेने नहीं आए थे।
4: अरे बेटी, तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे वो जानबूझकर हमें लेने नहीं आए थे। याद नहीं, उन्हें भारतीय दूतावास के किसी जरूरी काम से सुरीनाम जाना पड़ गया था।
3: तो अब भी उन्हें दूतावास के काम से कहीं जाना पड़ गया होगा।
4: हो सकता है कि...
5: हेलो मिस्टर वर्मा, माफ कीजिए मुझे आने में देर होगी।
4: अरे कादिर, तुम पिताजी नहीं आए?
5: दरअसल उन्हें किसी काम से बाहर जाना पड़ गया। उन्होंने कल रात मुझे फोन करके कहा कि मैं आपको लेने हवाई अड्डे पहुंच जाऊं। आपको घुमाने की जिम्मेदारी भी मेरी।
4: अच्छा अच्छा, कादिर मेरी बेटी श्वेता से मिलो। और श्वेता, ये है अब्दुल कादिर मोहम्मद फादिल।
3: अस्सलाम वालेकुम।
5: वालेकुम अस्सलाम। अरे वहाँ श्वेता बिटिया को तो मिस्री अभिवादन भी आता है। चलिए मिस्टर वर्मा, बाहर गाड़ी खड़ी है, आपको आपके पिताजी के घर पहुँचा दो।
4: ठीक है, चलो श्वेता अपना हैंडबैग उठा लो, आओ आओ चलो।

0: और सुनाओ कादिर, तुम्हारा शोध कार्य कैसा चल रहा है?
1: अब तो पूरा होने वाला है।
2: कादिर अंकल, आप किस पर शोध कर रहे हैं?
1: मिस्र की प्राचीन सभ्यता और सिंधु घाटी की सभ्यता की पारस्परिक समानताओं पर।
0: इसी सिलसिले में कादिर 2 साल भारत में भी आकर रहे थे।
2: अच्छा, तभी तो आप इतनी अच्छी हिंदुस्तानी बोल लेते हैं।
3: अरे कादिर अंकल, मैंने तो सोचा था काहिरा पुराने ढंग का शहर होगा, लेकिन यहाँ तो ऊंची ऊंची इमारतें हैं, चौड़ी चौड़ी सड़कें हैं।
1: बेटा, ये काहिरा का नया भाग है। जैसे तुम्हारी नई दिल्ली है ना, काहिरा भी दिल्ली की तरह कई बार उजड़ा और कई बार बसा। दिल्ली की ही तरह इसके नाम भी बदलते रहे। आज इसका नाम अल काहिरा है।
3: अच्छा, काहिरा नहीं अल काहिरा।
1: हाँ।
3: पापा पापा, वो देखो नील नदी है ना।
0: हाँ, वो नील नदी ही है। काहिरा शहर नील के किनारे बसा हुआ है। जानती हो, नील नदी दुनिया की सबसे लंबी नदी है। इसकी लंबाई 6648 किलोमीटर है।
1: लीजिए, वो रहा आपके पिताजी का घर। मिस्टर वर्मा, घर में एक नौकर है, वो आपकी देखभाल करेगा। अभी आप लोग आराम करें, मैं शाम को आऊंगा, फिर आपको काहिरा शहर घुमाने ले चलूंगा।
0: अरे कादिर भाई, एक प्याला चाय तो पीते जाओ।
1: नहीं, अभी नहीं, शाम को। अभी मुझे एक व्यक्ति से मिलने जाना है अपने शोध कार्य के सिलसिले में। अच्छा, मैं चलता हूं।
0: अच्छा अच्छा।

0: कादिर अंकल, ये बाजार तो बिल्कुल पुरानी दिल्ली जैसा है। फुटपाथ पर लोगों ने दुकानें लगा रखी हैं और देखिए कैसे आवाजें लगा लगा कर सामान बेच रहे हैं।
1: और वो देखो उस दुकान पर सूती कपड़े के कितने थान रखे। जानती हो बेटी, मिस्र की कपास सबसे बढ़िया मानी जाती है।
0: पापा, यहाँ के लोगों की वेशभूषा कितनी अच्छी है। पुरुषों ने लंबा सा चोगा पहन रखा है और ढीला पजामा, सिर पर टोपी है।
2: इस चोगे को गलाबिया कहते हैं।
1: और वो देखो औरतों ने लंबी बाहों वाले कुर्ते पहन रखे हैं।
0: हाँ, बुर्के में कुछ ठीक से दिख नहीं रहा। अच्छा कादिर अंकल, सभी औरतों ने तो बुर्का नहीं पहन रखा, ऐसा क्यों?
2: अब धीरे धीरे बुर्के का रिवाज कम होता जा रहा है।
1: अरे बाप रे, यहाँ कितनी भीड़ है। कादिर, क्या आज कोई खास बात है?
2: अरे नहीं मिस्टर वर्मा, खास बात यही है कि यहाँ की जनसंख्या बड़ी तेजी से बढ़ रही है। रोजगार की तलाश में लोग गांव से शहरों की तरफ आ रहे हैं। जानते हैं काहिरा की जनसंख्या 1000 व्यक्ति प्रतिदिन की दर से बढ़ रही है, और नतीजा ये कि यहाँ लोगों के पास रहने को घर नहीं।
0: अच्छा, तो फिर ये लोग कहाँ रहते हैं?
2: कुछ लोग इमारतों की छतों पर अपना घर बना लेते हैं, कुछ मकबरों और कब्रिस्तान में डेरा जमा लेते हैं, कुछ तो झुग्गियां बनाकर रहते हैं।
0: दिल्ली में भी तो बहुत से लोग झुग्गियों में ही रहते हैं।
2: हाँ, मैंने कहा था ना कि दिल्ली और काहिरा की बहुत सी बातें मिलती हैं। चलो आओ, तुम्हें जलेबी खिलवाएं।
0: जलेबी? वैसी ही जैसे हमारे देश में मिलती है?
2: हाँ बिल्कुल वैसी।
1: कमाल है
2: मिस्टर वर्मा, जलेबी नहीं, यहाँ बालूशाही, फेनी, मेवे का हलवा, सभी मिठाइयाँ मिलती हैं।
1: वाह।
2: और ईद के मौके पर सिवैयाँ भी मिलती हैं।
0: मैं तो मेवे का हलवा खाऊंगी।
2: ठीक है, चलो उस कोने पर दुकान है जहाँ मेवे का हलवा बहुत बढ़िया बनता है,
1: और इसके बाद घर लौट जाएंगे।
0: इतने जल्दी?
1: अरे कल सुबह पिरामिड देखने नहीं जाना क्या?
0: हाँ जाना है।
1: फिर
2: ठीक है, कल मैं आप लोगों को सुबह लेने आऊंगा, अभी चलकर मेवे का हलवा खाते हैं।

0: वाह कितना सुंदर गीत है। अच्छा कादिर, क्या हम लोग आसमान बांध देख सकते हैं?
1: इस स्टीमर से तो नहीं, कल कार से आपको मैं वहां ले चलूंगा।
2: वहां क्या है अंकल?
1: 364 फीट ऊंचा और 12,565 फीट लंबा बांध है बेटा, जिसके पीछे 300 मील लंबी झील बनाई गई है। इसे नासिर झील का नाम दिया गया है।
0: इस बांध के बन जाने से मिस्र के लोगों को काफी फायदा हुआ होगा।
1: हाँ बिल्कुल, अब सिंचाई आसानी से हो जाती है। बांध से पैदा हुई बिजली से उद्योगों को भी बढ़ावा मिला है, लोगों के जीवन में खुशहाली आई है।
0: आबू सिंबल के मंदिर भी यही कहीं है ना कादिर?
1: हाँ, बांध के पास ही पहाड़ी पर। जानते हैं, बांध के पीछे जो झील बनाई गई है, ये मंदिर उसमें डूब गए होते, लेकिन वैज्ञानिकों और पुरातत्व विशेषज्ञों ने इन मंदिरों को बड़ी होशियारी से घाटी से हटवाकर पहाड़ी पर स्थापित करवा दिया।
2: पापा, मैं भी देखूंगी वो मंदिर।
0: अरे मुझसे कहने का क्या फायदा बेटा, अपने कादिर अंकल से कहो।
2: अंकल ले चलेंगे ना हमें?
1: हाँ हाँ, अगर तुम एक पहेली बूझ दो तो।
2: क्या फिर से पहेली? क्या आबू सिंबल के मंदिर की भी कोई पहेली है?
3: श्रोताओं, अभी आपने सुना कार्यक्रम नील के किनारे, और अब इसी के साथ हम अपने उमंग कार्यक्रम को विराम देने की आज्ञा चाहते हैं। तो अपने मित्र अजीत
4: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ आज्ञा दीजिए। कल फिर से होगी मुलाकात। नमस्कार।
5: उमंग उमंग उमंग उमंग।
4: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम NCERT।

0: सलाहकार थे पीएम जय।
1: आकाशवाणी दिल्ली प्रस्तुत करता है विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर।
2: फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर के आज के अंक में आप सभी का स्वागत है। आज का ये कार्यक्रम पुनः प्रसारित किया जा रहा है।
3: नमस्कार, आप सबका स्वागत है प्रोग्राम रेडियो डॉक्टर में। मैं हूं आपके साथ राज।
4: गुड इवनिंग डियर लिसनर्स, वेलकम बैक वंस अगेन टू आकाशवाणी एफएम ट्रैक बैंड ब्रॉडकास्टिंग लाइव फ्रॉम कोहिमा।
5: एफएम ट्रैक बैंड 103 MHz, न्यूज़ म्यूजिक एंड एंटरटेनमेंट FM 103 MHz.
4: This is Akashvani Kohima. The news headlines at 3 p.m. President Draupadi Murmu underlines unity of citizens to achieve goal of Viksit Bharat. Prime Minister Narendra Modi says in this era of global turmoil, India believes in the paramount role of dialogue and diplomacy. Union Health Minister J.P. Nadda chairs high-level meeting with Labour and Employment Minister Mansukh Mandaviya and Minister of State for Defence Sanjay Seth to strengthen support of TB Mukt Bharat Abhiyan. Union Minister Nitin Gadkari says flagship projects are strengthening connectivity across India. Union Ministry of Tribal Affairs unveils renewed vision for strengthening tribal research institutes as centers of knowledge, innovation and evidence-based policy-making for tribal development. Nagaland government says proposed legislation on frontier Nagaland territorial authority will contain necessary provisions to confer legislative powers over certain subjects and departments to be transferred to for the districts under its jurisdiction.

0: FM 드래곤 밴. 뉴스, 뮤직, 엔터테인먼트. FM 103 메가헤르츠.
1: हाँ जी बेल लिसनर्स जैसे मैंने दिया दे रियल टाइम दे कोहिमा ट्रैफिक लगा जानकारी और कोई दिया से नॉर्थ बाउंड को ले तो इट नॉर्थ कोहिमा फिनी जा लगा ट्रैफिक डायरेक्शन से हेड टुवर्ड्स हाई स्कूल एरिया और साउथ बाउंड ले साउथ ऑफ कोहिमा फिनी आया लगा ट्रैफिक डायरेक्शन हेड टुवर्ड्स बीयूसी तेरे मोंकला टू पीएचक्यू जंक्शन मजो दिया से को ले नॉर्थ बाउंड और साउथ बाउंड तो इधर समय दे ट्रैफिक तो मॉडरेट दिया से और अलग रास्ता लो को ले तो ओल्ड मिनिस्टर सील टू जेल कॉलोनी इधर रास्ता लो पारो PHQ Junction or Major Junction majode ase gole northbound la direction di traffic to moderate ase or southbound la direction di traffic to heavy ase agwala grasa low parbo paramedical to T model to IG noliwa lady smile road TCB or Raza point majode ase gole northbound la ga direction di traffic to moderate ase or southbound la direction di traffic to heavy ase agwala grasa low parbo Box cutting to NHAK to Census Point, Noliba Bulbari to Kochuzi Ground to Razu Point. Razu Point or Census Point, Majadasigole, northbound la direction di traffic to moderate ase, or southbound la direction di traffic to heavy ase. Agwala grasa low paribo, Census Point to NHAK. High School Junction or Census Point, Majadasigole, northbound la direction di traffic to moderate ase, or southbound la direction di traffic to heavy ase. Alagrasa low parabo, Billy Graham Road to DBS, Noliba High School Junction to T Model Road. NHK Junction or Census Point, Majodia Sigule, northbound or southbound, Twida Point TV traffic to light ase. It was a real time day, Koima traffic laga jankari, Amyanite Honile, Ago Idia Agi Barina program, Anitibul ase yade. Places of interest. Are you to places of interest? Nahayagide, idea diahobo rural connect.

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आरजी आयुष्मान

0: News, music, and entertainment. This is FM Track Today. FM 103 Megahertz.
1: जी हाँ, अपना कनहुनिया से आकाशवाणी एफ एम ट्रैक पर 110 मेगाहर्ट्ज उन्हें ढगा सब बिल्लाक अपना खन सबके प्रोग्राम ते स्वागत करे से और जी साम अपनी पसंद गाना एस एम एस रिक्वेस्ट हिंदी फिल्मी गीत प्रोग्राम से और जुड़ी अपना खाना पसंदीदा गीत खान अपना खन हुनी बोले कारण इच्छा आसे कोले मने लिखी गिना पठाई दिवी नम्बर आसे 9436805333 नम्बर आको कोई दी आसे 9436805333 इतु नम्बर दे लिखी गिना पठाई दिवी किन्तु जिते अपना खन मैसेज लिखिबो फिल्म लगा नाम आरो गाना लगा टाइटल जी होली भी ठीक ठाक लिखी गिना पठाई दिवी तीतिया मुए अपना खाना पसंदीदा गीत खान बजाई दिया होबो तो हुनी रखा सब बिल्लाक मुए अपना खान लगा मैसेजेस खान रुखी रागी बो इतु समय टे एक साथ मिलेगी ना हुनी बो अरिजीत सिंह अमिताभ भट्टाचार्य आरो खरस लगा वास्ते फिल्म 21

किसे नहीं मरने दोगी? ये क्या हो गया तुम्हें है? तुम्हारे माथे पर पसीना क्यों? किसकी मौत के बारे में सोच रही थी? मेरी? अरे मेरी जिंदगी और मौत तो अब तुम्हारे साथ है, और प्यार करने वाले मौत से डरा नहीं करते।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडोनेशिया की संसद को संबोधित किया, कहा भारत खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र का समर्थक, विस्तारवाद नहीं विकास मार्ग पर चलता है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम को वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित पहल बताया, कहा इससे आर्थिक और पर्यावरणीय लाभ। गृहमंत्री अमित शाह ने दिल्ली में 70 लाख पौधे लगाने के अभियान का शुभारंभ किया, कहा 6000 हेक्टेयर से अधिक हरित रिज क्षेत्र को वन क्षेत्र में विकसित किया जाएगा। केरल में वायनाड सुरंग निर्माण स्थल पर भूस्खलन से 3 लोगों की मौत और 6 लोग लापता, वायनाड और कोझिकोड जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी। मौसम विभाग का अगले 4 दिन में उत्तर और दक्षिण भारत के कई हिस्सों में तेज वर्षा का अनुमान और नॉटिंघम में 5 मैचों की T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट श्रृंखला के तीसरे मैच में आज भारत का मुकाबला मेजबान इंग्लैंड से। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भारत इंडोनेशिया रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि इससे दोनों देशों की समृद्धि बढ़ेगी और क्षेत्रीय तथा वैश्विक शांति भी बनी रहेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र का समर्थन करता है और विस्तारवाद नहीं विकास मार्ग पर चलता है।
1: भारत विस्तारवाद नहीं विकासवाद की नीति पर चलता है और इसलिए हम भारत में कहते हैं सबका साथ सबका विकास। आज मैं यही मंत्र यही भावना लेकर इंडोनेशिया के आप सभी सांसद सदस्यों के बीच आया। भारत और इंडोनेशिया के बीच समुद्र ताजा भविष्य का केंद्र है।
0: जकार्ता में इंडोनेशिया की संसद को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत और इंडोनेशिया के बीच संबंध सदियों पुराने हैं और दोनों देशों में समान लोकतांत्रिक मूल्य, आपसी विश्वास और भविष्य के लिए साझा दृष्टिकोण है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत विकास, शांति, स्थिरता और समृद्धि में विश्वास रखता है। श्री मोदी ने आतंकवाद और क्षेत्रीय सुरक्षा को कमजोर करने वाली एकतरफा कार्रवाइयों के खिलाफ सामूहिक कार्रवाई की आवश्यकता पर बल दिया।
1: आतंकवाद जैसे विषयों पर भारत और इंडोनेशिया दोनों की एक राय रही है। पिछले वर्ष पहलगाम में जब जघन्य आतंकवादी हमला हुआ, इंडोनेशिया तब भारत के साथ मजबूती से खड़ा रहा। मैं इसके लिए राष्ट्रपति प्रबोवो और आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं। हमारे दोनों देश काउंटर टेररिज्म पर जॉइंट वर्किंग ग्रुप के माध्यम से साथ काम कर रहे हैं।
0: प्रधानमंत्री ने रक्षा, समुद्री सुरक्षा, व्यापार, डिजिटल प्रौद्योगिकी, शिक्षा, एआई और महत्वपूर्ण खनिजों के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने का आह्वान किया। दोनों देशों के बीच सदियों पुराने सांस्कृतिक संबंधों पर प्रधानमंत्री ने कहा कि साझा विरासत रामायण से लेकर बोरोबुदुर तक फैली हुई है।
1: इंडिया और इंडोनेशिया सिर्फ समुद्र ही शेयर नहीं करते, हमारी हिस्ट्री भी शेयर्ड है। हमारा संबंध रामायण और महाभारत की विरासत है। बोरोबुदुर और प्रभानंद जैसी अद्भुत स्मारकों के जरिए जुड़े हैं हम। इंडोनेशिया के राष्ट्रीय प्रतीक गरुड़ा से जुड़े हैं।
0: प्रधानमंत्री ने कहा है कि वैश्विक विकास को गति देने में भारतीय अर्थव्यवस्था महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। इंडोनेशिया के जकार्ता में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि सरकार रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के मंत्र पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि भारत 1 अरब से अधिक लोगों के सपनों को साकार करने वाला राष्ट्र है और ऊर्जा तथा कनेक्टिविटी से लेकर सेमीकंडक्टर विनिर्माण तक कई क्षेत्रों में तेजी से प्रगति कर रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आत्मनिर्भरता की ओर भारत की यात्रा न केवल इंडोनेशिया बल्कि पूरे आसियान क्षेत्र के लिए प्रेरक शक्ति बन रही है। उन्होंने कहा कि भारत और इंडोनेशिया विकास के लिए एक समान दृष्टिकोण साझा करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मात्र 20 रुपए प्रति माह से शुरू होने वाली किफायती बीमा योजनाओं जैसी पहलों ने वित्तीय समावेशन में क्रांति ला दी है। वहीं यूपीआई और एक्सप्रेसवे के तेज विस्तार ने भारत की अर्थव्यवस्था को रूपांतरित किया है और लाखों लोगों के जीवन स्तर में सुधार किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इंडोनेशिया द्वारा दिया गया सर्वोच्च नागरिक सम्मान बिंतांग आदिपूर्णा दोनों देशों के बीच घनिष्ठ मित्रता का प्रतीक है।
1: आज सुबह ही मुझे इंडोनेशिया का सर्वोच्च सम्मान प्राप्त करने का भी सौभाग्य मिला। ये 140 करोड़ भारतीयों का यश है। ये भारतीय समुदाय के आप सभी साथियों का सम्मान है और सबसे बड़ी बात, ये पुरस्कार इंडोनेशिया और भारत की घनिष्ठ मित्रता का एक और प्रतीक है।
0: इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। बैठक में द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की गई और दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई गति प्रदान की गई। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि भारतीय प्रबंधन संस्थान आईआईएम बेंगलुरु को इंडोनेशिया में एक विदेशी परिसर स्थापित करने की अनुमति मिलने से भारत के शिक्षा क्षेत्र में नया अध्याय जुड़ गया है। इस प्रस्ताव को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडोनेशिया यात्रा के दौरान मंजूरी दी।
2: बेंगलुरु आईआईएम वैश्विक स्तर पे ग्लोबल स्टैंडर्ड में क्यूएस रैंकिंग में 29th पोजीशन पे अभी है। एशिया की सूची में ये 5th नंबर पे है। इस प्रकार के एक महत्वपूर्ण इंस्टीट्यूट हमारी भारतीय ज्ञान परंपरा को, भारतीय शिक्षा प्रणाली को वैश्विकरण करने में, इंटरनेशनलाइज करने में एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित पहल है, जिससे देश को आर्थिक और पर्यावरणीय क्षेत्र में महत्वपूर्ण लाभ मिले हैं। नई दिल्ली में विकसित भारत सम्मेलन में श्री गडकरी ने ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने और जीवाश्म ईंधन के आयात पर निर्भरता कम करने के लिए वैकल्पिक जैव ईंधनों को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर बल दिया।
3: श्री गडकरी ने कहा कि वैकल्पिक ईंधनों के अधिक उपयोग से प्रदूषण कम होगा, ईंधन आयात में कमी आएगी और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, इससे किसानों की आय में भी वृद्धि होगी। उन्होंने कहा कि सरकार की प्रमुख परियोजनाएं देश में संपर्क व्यवस्था को मजबूत कर रही है। केंद्रीय मंत्री ने जम्मू श्रीनगर मार्ग पर बन रही 36 सुरंगें, केदारनाथ रोडवे और कश्मीर से कन्याकुमारी तक बेहतर सड़क संपर्क जैसी परियोजनाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि इनसे देश के बुनियादी ढांचे को मजबूती मिल रही है। श्री गडकरी ने ये भी कहा कि राजनीति सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन का माध्यम होना चाहिए। शिवांग की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीशा।
0: गृह मंत्री अमित शाह ने आज राष्ट्रीय राजधानी में हरियाली बढ़ाने के उद्देश्य से एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत दिल्ली में 70 लाख पौधे लगाने के मिशन का शुभारंभ किया। श्री शाह ने कहा कि केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार ने अगले 4 वर्षों में 6,300 हेक्टेयर हरित रिज क्षेत्र को पूर्णतः वन भूमि में विकसित करने और इसकी सुरक्षा सुनिश्चित करने का संकल्प लिया है।
4: रिज के अंदर 70 से ज्यादा तालाब भी होंगे, छोटे छोटे रेस्टोरेंट भी होंगे और यहाँ पर जितनी भी हमारी आर्कियोलॉजी की संरचनाएं हैं उसको भी हम सुरक्षित करेंगे।
0: गृह मंत्री ने कहा कि सरकार यमुना नदी को साफ करने के लिए निरंतर प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि पिछले एक वर्ष में 129 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट चालू हो गए हैं। गृहमंत्री ने 300 इलेक्ट्रिक बसों का शुभारंभ किया और 3 नवनिर्मित बस डिपो तथा 40 वाहन परीक्षण केंद्रों का वर्चुअल उद्घाटन किया। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज प्रगति परियोजना का शुभारंभ किया। इसका उद्देश्य 20,000 से अधिक कृषि उद्यमियों और 20 लाख किसानों को सशक्त बनाना है। नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत में श्री चौहान ने विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कृषि विकास, समृद्ध गांव और समृद्ध किसानों के विकास की आवश्यकता पर बल दिया।
5: प्रधानमंत्री जी के विजन के कारण भारत की कृषि तेजी से बदल रही है, विकसित भारत के लिए, विकसित कृषि, समृद्ध गांव, समृद्ध किसान। उसमें सरकार अपने सारे प्रयत्न कर रही है, लेकिन सरकार के साथ अगर बाकी संगठन भी जुड़ते हैं तो काम और तेजी से आगे बढ़ता है। और प्रगति कार्यक्रम के अंतर्गत ये तय किया है कि अभी तक 26,000 कृषि उद्यमी ट्रेंड करके छोटे छोटे कृषि उद्यमी इन्होंने तैयार किए हैं, जो एक गांव में काम करते हैं और गांव की कृषि को बदलने के लिए 100-200 किसान को साथ जोड़ते हैं।
0: आपातकालीन ऋण गारंटी योजना के पांचवें चरण के अंतर्गत 4 लाख से अधिक गारंटियां जारी की जा चुकी हैं और गारंटीकृत राशि 1,55,000 करोड़ रुपए से अधिक हो गई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस वर्ष मई में शुरू की गई इस योजना से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम सबसे अधिक लाभान्वित हुए हैं।
3: वित्त मंत्रालय ने कहा कि यह योजना पश्चिम एशिया की भू राजनीतिक स्थिति से प्रभावित व्यवसायों को तेजी से और बड़े पैमाने पर सहायता प्रदान कर रही है। मंत्रालय ने बताया कि योजना ऋण देने वाली संस्थाओं को उधारकर्ताओं को अतिरिक्त ऋण देने के लिए जोखिम कम करने हेतु बनाई गई है। इससे व्यवसायों को नकदी प्रवाह में व्यवधान से उबरने और संचालन जारी रखने में मदद मिलती है। इसने वित्तीय संस्थानों को अधिक आत्मविश्वास के साथ ऋण देने में भी सक्षम बनाया है। इससे एमएसएमई के लिए अतिरिक्त ऋणों पर 100% और अन्य व्यावसायिक क्षेत्रों के लिए 90% गारंटी कवरेज प्रदान करके जरूरतमंद क्षेत्रों तक तरलता पहुंच सुनिश्चित होगी। वित्तीय सेवा विभाग ने योजना के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए देश भर में एक अभियान भी चलाया है। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जया भारती।
0: शैक्षणिक वर्ष 2025-26 में प्रारंभिक और माध्यमिक स्तरों पर स्कूली शिक्षा छोड़ने वाले बच्चों की दर में पिछले 3 वर्षों की तुलना में उल्लेखनीय कमी देखी गई है। शिक्षा मंत्रालय ने आज देश में स्कूली शिक्षा पर एकीकृत जिला सूचना प्रणाली एजुकेशन प्लस 2025-26 की रिपोर्ट जारी की। केंद्रीय कोयला और खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने सिंगारेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड को ताड़ीचेरला 2 कोयला ब्लॉक के सीधे आवंटन की घोषणा की। सहकारी संघवाद के महत्व पर उन्होंने कहा कि सिंगारेनी की वित्तीय स्थिति को सुधारने, बढ़ते कर्ज का सामना करने और घटते कोयला उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री ने इस निर्णय को मंजूरी दी है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। वायनाड के मेपड़ी में कल्लाड़ी के पास सुरंग निर्माण स्थल पर तेज बारिश के बाद हुए भूस्खलन में 3 लोगों की मौत हो गई है। जमीन के नीचे फंसे 9 मजदूरों को बचा लिया गया है। 6 अन्य अभी भी लापता हैं और उनके मलबे के नीचे दबे होने की आशंका है। अग्निशमन और आपदा राहत दल बचाव अभियान में लगे हुए हैं। एक रिपोर्ट।
6: केरल के मुख्यमंत्री वीडी सतीशन ने कहा है कि वायनाड जिले में भूस्खलन स्थल पर बचाव कार्य तेज कर दिया गया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि 20 जून को ही सुरंग बनाने के काम के दौरान जमा हुई मिट्टी को हटाने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन ठेकेदारों ने इन निर्देशों का पालन नहीं किया। घटनास्थल के लिए रवाना हुए राज्य के मंत्रियों ने कहा कि अभी सबसे बड़ी प्राथमिकता भूस्खलन में फंसे लोगों को बचाना है। इस बीच मौसम विभाग ने आज वायनाड और पड़ोसी जिले कोझिकोड में तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं कन्नूर और कासरगोड जिलों में भी ऑरेंज अलर्ट है, जबकि 4 अन्य जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। तिरुवनंतपुरम से स्मिति एम पालरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: महाराष्ट्र में आज भी मॉनसून की तेज वर्षा के कारण कई क्षेत्रों में बाढ़, भूस्खलन और यातायात बाधित रहा।
7: नासिक के घाट इलाकों में लगातार हो रही भारी बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ है। रायगढ़ जिले में भी भारी बारिश जारी है, जिससे मुंबई गोवा हाईवे के कई हिस्सों में पानी भर गया है। हालात से निपटने के लिए NHAI ने हाईवे पर क्विक एक्शन टीम तैनात की है। घाट क्षेत्रों में लगातार हो रही बारिश से नदियों और बांधों का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। एहतियात के तौर पर प्रशासन ने अगले आदेश तक मानसून टूरिज्म, ट्रैकिंग और एडवेंचर स्पोर्ट्स पर रोक लगा दी है। देवप्रिय भट्टाचार्य, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: इस बीच मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों तक उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, सौराष्ट्र, कच्छ, विदर्भ, राजस्थान और पूर्वोत्तर क्षेत्र के कुछ भागों में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। दक्षिण पश्चिम मॉनसून आज गुजरात के शेष भागों और राजस्थान तथा हरियाणा के कुछ और क्षेत्रों में आगे बढ़ गया है। भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आज रात 10 बजे से नॉटिंघम में खेला जाएगा। भारत 5 मैचों की श्रृंखला में 0-1 से पीछे है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडोनेशिया की संसद को संबोधित किया, कहा भारत खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र का समर्थक, विस्तारवाद नहीं विकास मार्ग पर चलता है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम को वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित पहल बताया। गृहमंत्री अमित शाह ने दिल्ली में 70 लाख पौधे लगाने के अभियान का शुभारंभ किया। केरलम में वायनाड सुरंग निर्माण स्थल पर भूस्खलन से 3 लोगों की मौत और 6 लोग लापता, वायनाड और कोझिकोड जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
8: Good evening. This is Akashwani and I am Anuja Kumar with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi addresses Indonesian Parliament, says India stands for freedom of navigation in the Indo-Pacific and follows the path of development, not expansionism. Road Transport and Highways Minister Nitin Gadkari asserts ethanol blending program is scientifically proven and delivered significant economic and environmental benefits. Home Minister Amit Shah launches mission to plant 70 lakh saplings in Delhi, over 6,000 hectares of green ridge area to be developed into forest land.

आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।